इंसान कठोर हृदय वाला बनकर चारों ओर भय का वातावरण पैदा कर रहा है। महापुरुष इसकी भावनाओं को बदलकर इसे समझाते हैं कि मानव तू किसी का बुरा मत मांग, तू किसी का बुरा मत कर, तू धरती को नरक मत बना, इसके बजाय तू दूसरों का ख्याल कर, इंसानियत को अपना कर, मानव की दिल से कदर करते हुए तू दूसरों को चैन सुकून देने वाला बन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अप...

0: आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप अपने रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz पर सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती श्वेता शाह से की गई बातचीत। आपकी बातचीत का विषय है योग, मानसिक स्वास्थ्य व पोषण विधि। बातचीत करेंगे आज के मेहमान से भारत सोपोरी। नमस्कार सभी श्रोताओं का आज के स्वस्थ चर्चा कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंतु का संतुलन होता है जो हमारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। स्वस्थ का मतलब बस बीमार नहीं होना नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न पहलुओं का सम्मिलित होता है जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाते हैं। स्वस्थ चर्चा कार्यक्रम के श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अंबाला के योग एक्सपर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग कोच श्रीमती श्वेता शाह जी, जो 22 साल का अनुभव रखते हैं योग, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण विधि में। स्वागत अभिनंदन मैडम श्वेता शाह जी आज के कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता स्टूडियो में।
2: मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मंच दिया। आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ, चाहे वो इसमें से मेरी एक ही बात पकड़ पाए, फायदा हो पाए, यही मेरी आज इच्छा है यहाँ पर आने की।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का साक्षात्कार। आपसे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे योग, मानसिक स्वास्थ्य व पोषण के बारे में। पहले आपसे जानना चाहेंगे योग का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर कितना है, इसके समय और क्रियाएं क्या है जो हम सबके लिए लाभदायक हैं।
2: योग बेसिकली अगर हम शाब्दिक रूप से भी देखें, योग का अर्थ है जोड़ना, यूनियन। तो हम इस बात को जरा ध्यान से समझें कि जब हमारा मानसिक शारीरिक समन्वय होता है, हम उसको जोड़ पाते हैं, हम उसके साथ बराबर मिलकर एक समान होकर के काम कर पाते हैं, जी पाते हैं, सही मायने में हम उसे ही योग कहते हैं
1: जी।
2: और इसको हम कर सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं, और एक साधारण भाषा में या एक साधारण अर्थ में हम समझें तो लोग समझते हैं ये एक आसन है, ये एक क्रिया है, उससे बहुत ज़्यादा है। वो एक शुरुआत है जिससे आप अपने देह को तैयार करते हैं, उसको शारीरिक रूप से गठिला बनाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि आप आगे आने वाली बाकी सारी जो हमारी शास्त्रों के द्वारा दी गई स्पिरिचुअल जर्नी है, उन मेडिटेशंस को, उस ध्यान की अवस्था को, राजयोग को प्राप्त कर सके। तो ये जो है एक बहुत ही इलैबोरेट वर्ड है, इसमें कोई अंत ही नहीं है। तो हम इसको अगर लें कि बेसिक शब्दों में कि हमें अगर आसन का समय चाहिए तो बिल्कुल मान करके चलें कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको कुछ ना कुछ आपने खाया हुआ नहीं होना चाहिए, मिनिमम।
1: यानी कि खाली पेट ही योग करना चाहिए।
2: बिल्कुल, उसमें कुछ आसन है जो अपवाद की तरह हैं, जो डाइजेशन के लिए ही अच्छे हैं, जैसे वज्रासन है,
1: ठीक है,
2: कुछ उनको छोड़ दिया जाए जो आपको करना ही खाना खाने के बाद ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा व्हाट वी एक्सपेक्ट, और हमारे जो पुराने शास्त्र हैं देखा जाए तो योग पतंजलि से जहां से आया है वो ये कहता है, जो अब साइंस भी प्रूफ कर रही है कि एकादशी का जो व्रत है वो जापानीज ने पूरा रिसर्च करके बता दिया है कि हाँ उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं नियर अबाउट आफ्टर 30 आवर्स, 30 घंटों के बाद अगर आप प्रॉपर फास्टिंग करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी बॉडी में रीजनरेशन के, दोबारा से बनने वाले स्टेम सेल्स जो आपकी बॉडी को रिवाइव करते हैं, और बड़ा ही ल्यूक्रेटिव वर्ड है, बड़ा ही ऐसा शब्द है जो सबको बड़ा प्यारा लगता है, एंटी एजिंग, वो वाला जो काम है ना वो तब शुरू होता है। तो ये मान करके चलें कि इन आसनों को, इन क्रियाओं को करने के लिए अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए भोजन तो बिल्कुल नहीं चाहिए।
1: इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि अपने आप को तैयार करना है और इन क्रियाओं को करने से जो स्वास्थ्य लाभ उनको मिलेगा उसके लिए वो अपने आप को तैयार कैसे करें, जो पहली बार करने वाले हैं।
2: हाँ, तो इस पर हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मीम बनी हुई है कि जब तक हम कुछ खाते नहीं है तो दिमाग नहीं चलता है, खा लेते हैं तो नींद आ जाती है।
1: ठीक है,
2: तो इस बात से हमें समझ में आता है कि हर चीज को मॉडरेशन में करें, बैलेंस होकर के करें, उतना करें जितना रिक्वायर्ड है। खाने की जगह हमारी उतनी ही है। कोई भी इंसान अगर अपनी मुट्ठी को बांध ले तो हमारे पेट का साइज बस उतना ही होता है, और उसके ऊपर हम जितना खाते हैं तो वो पेट फैलता जाता है। और फिर आजकल इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, पेट को जी काटा जा रहा है, उसे छोटा किया जा रहा है, रीसाइज किया जा रहा है। हमारी कैपेसिटी सिर्फ एक मुट्ठी ही है, और बिल्कुल मान करके चलें जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद जो मिक्सी चलाई जाती है अगर उसमें गुंजाइश ही ना हो, आपके जो बाइल जूसेस हैं, आपके पेनक्रियास का काम है, लिवर का काम है, हर दूसरा पेशेंट हम सुनते हैं लिवर कैंसर हो गया है, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहले तो खान पान सबसे प्राइम चीज है कि कितना खाया जाए और क्या खाया जाए। कुछ एक या दो चीजें, जैसे इंसोमेनिया बहुत पॉपुलर है, नींद ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन की भी, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में मैग्नीशियम का कमी होना
1: जी।
2: तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हर चीज खाइए लेकिन बैलेंस तरीके से खाइए। और दूसरी चीज, रात को जो हमारा पहला गुरुकुल सिस्टम था, संध्या समय बाद ना खाएं, कम खाएं। और अगर उसके लिए आपको मोटिवेट करना चाहूं तो एक बात कहूंगी कि जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो 7 बजे के बाद कुछ खाते नहीं है। उसका कारण यही है कि जैसे जैसे सूर्य जो आपके शरीर में जठराग्नि बन करके आपके नाभि चक्र में बैठता है
1: जी,
2: उसका कार्य जो है वो क्षीण और बिल्कुल कम होता चला जाता है। तो वो आप इतना सक्षम ही नहीं होता है कि आप जितना उसमें डाल रहे हैं कि वो उसे पूरी तरह से पचा पाए। तो रात का जो खाना है या तो ना, या कम, या 7 बजे के बाद नहीं, ये होना चाहिए। कभी खा लिया, आप शादी में गए, सोसाइटी में रहते हैं, वो एक अलग बात है। कोशिश करें ऐसे रखेंगे तो फिर वो बैलेंस्ड जितना अमाउंट है बॉडी ले लेगी।
1: श्वेता जी, जो आपने शुरुआत करी इस कार्यक्रम की, आपने जो भी कहा वो हमारे धर्म शास्त्रों के साथ जुड़ा है, खास करके योग। जो सरल भाषा में हम योग समझते हैं, मुझे ये समझ आ गया कि सिर्फ योग एक क्रिया करना नहीं है, योग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें क्रिया के साथ साथ अपने आहार का संतुलन और समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए, और जो आपकी बातें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये श्रोताओं को किसी न किसी तरीके से फायदा करे। श्वेता जी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और कौन सा योग आसन है जो तनाव को कम करता है?
2: मुझे लगता है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को। अगर हम बात करें मानसिक, जो इंसान का इस समय करंट मेंटल स्टेटस है
1: जी,
2: वो बहुत ही डिसऑर्डर्ड है। उसकी जो बैलेंसिंग है, जो शब्द हम बार बार बात कर रहे हैं योग, वो सही स्थान पर नहीं है
1: जी।
2: उसका कारण है क्योंकि हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी गैजेट्स में रह रहे हैं। अगर हम अपने आसपास देखें, हमारे पास नेटवर्क टावर्स हैं
1: जी,
2: आपका जो खाना है वो आपके बहुत ही कॉमनेस्ट चीजें हैं, एयर फ्रायर्स में बन रहे हैं, माइक्रोवेव में बन रहे हैं
1: जी।
2: कभी हमने इस चीज को सोचा ही नहीं है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म कैसे होता है। वो कहीं और से हीट नहीं लाता है, उस खाने की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको डिसहार्मनी में रखता है पहले, वो उसको आपस में टकराता है, उससे जो हीट जनरेट होती है उससे खाना गर्म होता है। तो मतलब ये माने कि किसी दुश्मन को भी हमें उसे गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ है ही नहीं, वो आपको डिसऑर्डर ही देगा। वो हमारे पुरानी कहावतें हैं ना, हम जैसा खाते हैं, जैसा खाया है वैसा ही हमारा तन बनेगा, वैसा ही हमारा मन बनेगा
1: जी।
2: तो अगर हमारा जो खान पान का तरीका है, ये सब चीजें हैं, उनकी वजह से जो हमारा जो मेंटल बैलेंस, जो हमारा मानसिक स्थिति को होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है, और चाहकर भी नहीं हो पाएगा जब तक हम उसको कंट्रोल ना करें, रेगुलेट ना करें। हर 2 मिनट बाद फोन उठा करके चाहे रील्स देने की इच्छा है, या हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसकी कितनी प्राइस देने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपनी शांति को कुछ देर की मोमेंट्री प्लेजर के लिए छोड़ सकते हैं, तो हम उसको उतनी देर के लिए कंटिन्यू करें, नहीं तो उसको वहीं थोड़ा रेगुलराइज करें।
1: तो क्या नहीं है ऐसा कि जो बहुत पहला समय था जहां पर ये गैजेट्स हमारे पास नहीं होते थे, और तब हम समय से अपना काम भी करते थे और समय से खान पान भी करते थे और सोते भी थे। तो क्या इन चीजों का दुष्प्रभाव हमारी जीवन में बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में?
2: बहुत ज्यादा। आप ये देखिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अभी पीछे सचिन तेंदुलकर का भी एक आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने बताया कि वो शायद साउथ में किसी जगह रिजॉर्ट है जहां पर पुराने तरीके से रहने के लिए उनको एक हफ्ते का स्टे दिया गया, जिसमें पूरा सस्टेनेबल हाउस है, उसमें सब कुछ जैसा पहले, फ्रिज भी जो मिट्टी के फ्रिज नीचे जिसमें सामान रख सकते थे, सस्टेन कर सकते थे, इको फ्रेंडली जिसको हमने अब नया टर्म दिया है, वैसे वाले घर, पुराने, उस तरह से वो रहने की प्रोविजन को इंजॉय करते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर आपको मिल कहाँ रही है। रिसर्चर्स बता रही हैं, दिल्ली में जब हम बार बार बात करते हैं कि लंग फिजिशियंस अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आज से 25 साल पहले जब हम ऑपरेट करते थे तो लंग्स का कलर होता था पिंक, गुलाबी। अब हम जब भी करते हैं तो लंग्स निकलते हैं ब्लैक, ब्लैकिश टोन में। इट्स अ जर्नल ट्रेंड, ये नहीं है कि एक या दो,
1: चाहे वो स्मोकर है या नॉन स्मोकर।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप दिल्ली जैसे शहर में आप रह रहे हैं तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से है, और बात यहां पर आती है कि हम उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी चॉइस है। हम डिस्कम्फर्ट लेना नहीं चाहते, तो वो प्राइस कौन पे कर रहा है? हम ही पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो चीजें हमें बेनिफिट के लिए मिली हैं, क्या हम उसको सही सुचारू रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? वो डिस्क्रिशन, वो जो सही डिसीजन लेने की पावर है ना, वो हम विल पावर लेस होने की वजह से लूज कर गए हैं। कहीं ना कहीं हमें फिर से स्ट्रांग होकर विल पावर दिखानी चाहिए कि जितनी जरूरत है उतना ही उस चीज का इस्तेमाल किया जाए।
1: एक योग एक्सपर्ट और मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट होने के नाते जो आपने बात बताई, इसको हम अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, हम यहाँ अंबाला की बात करेंगे, अंबाला के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम किस तरीके का प्रचार करें, आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, ताकि इन चीजों को वो समझे, जितना भी वो उन चीजों का इस्तेमाल कम कर सके उतना उनके जीवन के लिए फायदा होगा, प्लीज।
2: हाँ, कुछ चीजें हैं जो बहुत आसान है बट हम उस तरफ सोच नहीं पाते हैं। जैसे अपनी बॉडी को एक जर्नल डिटॉक्स दीजिए, मतलब हफ्ते में जो आप एक बार फास्ट रखिए, उस फास्ट को ऐसे वाला फास्ट नहीं कि एक घंटे बाद आपने फ्रूट चाट खा ली, एक घंटे बाद साबुदाने की टिक्की खा ली, एक घंटे बाद हमने आटे, कुट्टू के आटे वाली रोटी खा ली, वो फास्ट नहीं है, वो उपवास नहीं है। अगर आप सही मायने में डिटॉक्स करना चाहते हैं तो उस डिटॉक्स के लिए आपको अपने शरीर को रिलैक्स करना पड़ेगा, उसके सिस्टम्स में बहुत सारा जो 24/7 वो आपके लिए काम कर रहा है उसको शट डाउन करना पड़ेगा, कि आप जो हाइपरनेस में घूम रहे हैं, ओवर एक्टिव हैं, उसको थोड़ा आप ठंडा करिए, अपनी जठराग्नि को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत लॉयल है, वो इमीडिएटली अपनी ही बॉडी में अपने रिपेयर वर्क को स्टार्ट करती है। जब रिपेयर वर्क को स्टार्ट करती है तो उसको आपकी अंग्रेजी शब्दों में कहा जाए या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो दे कॉल इट ऑटोग्राफी, मतलब आपका अपने ही शरीर को खाना, यानी जो वेस्ट टॉक्सिन्स, उन सबको भी बड़ी इजीली वो एनगल्फ करता है, जल्दी जल्दी कंज्यूम करता है। तो हमें हफ्ते में एक बार तो अपने आप को तसल्ली से डिटॉक्स करना बनता है। वो हो सकता है खान पान से, वो हो सकता है सोने से, वो हो सकता है कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। जो आपके शरीर की प्राण शक्ति चलती है वो ब्रीदिंग है। बहुत लोगों में बड़ा मिथ है कि हम जिम जाते हैं इसलिए हमारा वेट कंट्रोल होता है। अगर हमने कभी ध्यान से 7th-8th में साइंस पढ़ी हो तो हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि जो बॉडी में ऑक्सीजन है वो कंबशन करती है, जलाती है आपके फैट को। तो जब हम ब्रीदिंग फास्ट करें, चाहे वो एक जगह बैठ करके भी करें, तो आप तो अपने कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। इट इज नॉट जिमिंग, इट इज द टोन ऑफ योर ब्रेथ विच इज बर्निंग, जो आपके कैलोरीज को बर्न कर रही है। तो आपको चूज करना है, हर चीज चॉइस पर है, आप किधर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये आप सोचें, आप समझें, तब आपको पता चलेगा कि हमारे लिए वो हफ्ते का एक दिन हमारे अपने शरीर के लिए। वैसे तो हम किसी को 10 रुपीज की भी चीज ऐसे नहीं देते।

0: लिए और हम 3 या 4 या 5 किलोमीटर चल लेते हैं और उसके बाद आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो क्या वो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का चलना क्या वो हमारे सेहत के लिए किसी हद तक फायदेमंद है? क्योंकि जब हम आज, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट वॉचेस भी है तो वो आपको बता देती है कि आपने 400 कैलोरीज को बर्न किया, तो क्या वो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है?
1: स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है तो डिजिटल वॉचेस भी आपकी एनर्जी खा रही हैं
0: जी,
1: एथरिकली तो वो भी आपको कंज्यूम कर रही हैं रादर देन कि आप उसे एज अ कमोडिटी कंज्यूम करें
0: जी,
1: तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए।
0: ओके
1: दूसरी चीज, अगर हमें शारीरिक रूप से सिर्फ सिर में दर्द है
0: जी,
1: तो हम क्यों चाहेंगे कि हम पैरासिटामोल खाएं और फिर वो लीवर पर भी इफेक्ट करे
0: जी।
1: तो ये हमें थोड़ा सा खुद को अवेयर करना पड़ेगा कि हमारे शरीर के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम उसे एक घंटे में ही 15 मिनट ब्रीदिंग कर सकते हैं, ऐसे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपका वेट लूज भी कर सकती हैं, आपको डिटॉक्स भी कर सकती हैं, आपको काम भी कर सकती हैं, यानी आप पहले से और शांत हो जाएंगे,
0: ठीक,
1: आप में ठहराव आना शुरू हो सकता है। दूसरा, उसी में से हम 15-20 मिनट एक्स्ट्रा निकाल करके अपने लिए एक डिटॉक्स जूस बना सकते हैं, वो भी एक डबल काम करेगा। अगर आप एक घंटा सैक्रिफाइस करने को तैयार ही हैं, तो जुडिशियसली उसको इस तरीके से प्लान करें कि वो 15-15-20-20 मिनट मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं जो बेस्ट तरीके से मेरे शरीर को स्वास्थ्य को अचीव करने में हेल्प कर सके।
0: ये हमें कौन समझा सकता है, हमें कहाँ जाना चाहिए? हमारा मकसद आज के इस कार्यक्रम का यही है कि हम भी समझें और हमारी श्रोता भी समझें और हम अंबाला को एक स्वस्थ होने की एक दिशा दे सकें।
1: बिल्कुल यही कहूंगी, देखिए जिंदगी बहुत तेज है, शायद सबके पास इतना समय भी नहीं है कि वो खुद इस चीज को पढ़ें, रिसर्च करें, समझें। हाँ, आपका ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बढ़िया तरीका है, ऐसे ही कुछ और टॉक्स आपके प्लेटफॉर्म से या कहीं और कभी भी आपको लगता है आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा अपना इंटरेस्ट, वही बात है कि कौन सी रील चलानी है आपको
0: जी,
1: आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज ओवर द इयर्स आपकी बॉडी को बेनिफिट करेगी। और हमारे बुजुर्ग हमें बहुत अच्छा बताते थे, अगर हम अपने बुजुर्गों के घर में सुने तो शायद ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य होगा हमारा। अगर हम एक बड़ा छोटा सा भी एग्जांपल ले, अगर पुराने जमाने में और अभी भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, बासड़े बनाए जाते हैं, पुराना खाना खाया जाता है, उसका कारण क्या है? अगर जो चपाती होती है वो जब पड़ी रहती है तो वो पुरानी होते ही, बासी होते ही उसमें B12 बढ़ जाता है, तो जिनकी एड़ियां गलती हैं या डिटॉक्स नहीं हुआ है, पेस्टिसाइड शरीर में ज्यादा है तो पैरों के दर्दों को बहुत आराम रहता है उससे। तो ऐसे ये सारी जो चीजें हैं बड़ी साइंटिफिक थी, अगर हम उन रिचुअल्स पे भी मुझे लगता है काफी हद तक स्विच बैक करें तो हमें फिर भी बहुत सारी चीजों का फायदा हो सकता है जो हम करना नहीं चाहते। अब
0: बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है श्वेता जी, और हम श्रोताओं के लिए एक डाइवर्शन लेते हैं। श्वेता जी, क्या आप संगीत को भी हमारे स्वस्थ जीवन का एक हिस्सा मानते हैं? अगर हाँ तो कौन सा ऐसा आपका मनपसंद गीत है जो हम आपको और श्रोताओं को सुनाएं?
1: मैं ये चीज को मानती हूं कि अगर हमारे पास समय है तो कुछ समय हमें कुछ संगीत को भी सुनने के लिए देना चाहिए, क्योंकि एक शब्द है म्यूजिक थेरेपी
0: जी,
1: और फ्रीक्वेंसी, ये बड़ा ही इलैबोरेट टॉपिक है, मैं इस पर क्या बात करूं कि आपके हर ऑर्गन की भी एक फ्रीक्वेंसी है।
0: अच्छा।
1: और आपके शरीर की भी एक फ्रीक्वेंसी है, आप हार्ट बीट लेते हैं ना
0: जी,
1: ECG लेते हैं ना
0: जी,
1: तो इसी तरह से बाकी सबकी भी है, और साइंस ने तो प्रूफ कर दिया है कि प्लांट्स के लीव्स तक में ये फ्रीक्वेंसी है
0: जी,
1: उनका भी म्यूजिक बजता है
0: जी।
1: तो जब आप अच्छी फ्रीक्वेंसीज को सुनते हैं, पॉजिटिव सॉन्ग्स को सुनते हैं, और ये बड़ा फैशन है, जितना ज्यादा आप लोगों से पूछेंगे ना उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, सबसे ज्यादा अब आप ही के प्लेटफॉर्म से बोलूंगी फूके हुए गाने होते हैं ना दुखी वाले, वही पसंद आते हैं। तो ये मान करके चले, फिर बात आती है चॉइस
0: जी,
1: अच्छे गाने सुने, लाइट हार्टेड गाने सुने जो मन को भी अच्छे लगे, आपके आसपास के एनवायरमेंट को भी अच्छा फील कराए,
0: खुशी भी दे सके।
1: बिल्कुल। अगर आपको लगता है, अगर आप स्पिरिचुअली ज्यादा नहीं ग्रो कर रहे हैं या आप एथिस्ट हैं, तो भी आपके लिए ये इतनी म्यूजिक थेरेपी काफी है, नहीं तो आपके पास बहुत मंत्रोच्चारण है वो लगाइए शाम को।
0: तो कौन सा गाना हम ले सकते हैं?
1: ऐ जिंदगी गले लगा ले एक प्यारा

0: सभी श्रोताओं का स्वागत एक बार फिर। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कितना अलग है। जहां आज के जीवन में तनाव, चिंता और अवसाद से सभी लोग ग्रस्त हैं।
1: शुक्रिया इस क्वेश्चन के लिए। मुझे लगता है लोगों को इसकी बहुत जरूरत है
0: जी।
1: आजकल बड़ा ही फैशनेबल सा वर्ड है डिप्रेशन
0: जी।
1: अगर लोगों से बात करें तो मिडिल एज हैं, ओल्ड एज हैं, इवन छोटे बच्चे, आप स्कूल गोइंग बच्चों से पूछे उन्हें भी डिप्रेशन है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमने अपने आसपास में बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस को इकट्ठा किया है
0: जी।
1: खान पान में भी इकट्ठा कर लिया और अपनी जड़ों को छोड़ दिया, अपनी उन चीजों को छोड़ दिया जो हमें सिखाई गई थी। उसके साथ साथ सही मायने में कहें तो अब हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम ज्यादा है। कभी पहले खाने बनाने वाली कोई आती थी क्या?
0: नहीं।
1: क्या कभी पहले मिक्सी हुआ करती थी क्या?
0: नहीं।
1: या खेतों में हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट्स हुआ करते थे? कुछ भी नहीं होता,
0: खुद ही करते थे।
1: हाँ, तो हम मानसिक रूप से इतना फ्री हैं कि हम गार्बेज को, कचरे को वहां पर रख पा रहे हैं। हमारे पास उतना समय है कि हम उसे उतना कंज्यूम कर पा रहे हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में इतने ही बिजी हैं तो आप कैसे सोच पा रहे हैं कि उसने कैसे कहा, उसने क्यों कहा, किस लिए कहा, कब कहा, दोबारा कब कह सकता है, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? ये सब सोचने के लिए दिमाग को खाली भी तो होना चाहिए
0: जी।
1: अगर आप अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं तो आपके पास सोचने का समय होना नहीं चाहिए। और फिर बात आ जाती है चॉइस और विल पावर की
0: जी।
1: कि क्या सोचना है, मेरे लिए क्या जरूरी है, ग्रोथ कितनी है, किस काम को करने से मेरा कितना फायदा होने वाला है, वो आप ही को डिसाइड करना है। सबसे बड़ी चीज है, एक 40s में आते आते तक पेरेंट्स, फादर, मदर दोनों कहेंगे बेटा पानी का गिलास पकड़ा दो। ये सबसे बड़ा फैक्टर है अपने आप को एज करने का। तो जो लोग काम कर रहे हैं ना गांव में, वो गायों को, भैंसों को चरा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेडीज भी कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं, वो आपको वहां पे 80 साल तक भी फिट दिख रहे हैं। तो आपको मान करके चलना चाहिए ब्रेन भी एक मसल है। अगर सही तरीके से आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं दी, हीमोग्लोबिन पूरा नहीं है बॉडी में जो ऑक्सीजन को लेकर वहां जाने वाला है, हरी सब्जियां आप खा नहीं रहे हैं, तो ब्रेन बेचारा क्या करेगा? जरूरत से ज्यादा सोचेगा और डीजेनरेट करेगा हर रोज। हमने उसको काम दिया ही कहां है? मानसिक तौर से तो जो साइंटिस्ट बैठा है ना, बस वही काम कर रहा है मुझे लगता है।
0: क्या यही अवसाद का एक मुख्य कारण हो सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल है, 100%। अगर हम इस चीज को मान करके चले, आपका मूड बहुत खराब है
0: जी,
1: और आप बैठ जाएं और अपना ही कोई एक अर्जेंट काम याद करके शुरू कर दीजिए, पूछती हूँ 15 मिनट बाद वो वैसा टोन रहेगा या नहीं, आप भूल ही जाएंगे।
0: मेरे हिसाब से वो स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे।
1: अचानक से मान लीजिए आपके घर फोन आ जाए, आपकी बेटी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं,
0: ठीक है,
1: तो आपके घर के डिप्रेशन का पेशेंट भी उठेगा और भागेगा,
0: अरेंजमेंट करेगा, साफ सुथरा होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो आप उनसे पूछिएगा आधे घंटे बाद कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप डिप्रेस्ड है, एक्सेप्ट सीवियर केसेस
0: जी जी,
1: जो उस स्टेट को परमानेंट बॉडी में हैबिचुअल बना चुके हैं।
0: आपने जो अभी शुरुआत में बात की, क्या ऐसा है कि हम साधारण लोगों ने या हर एक व्यक्ति ने अपने माइंड में, अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को जोड़ दिया है जिनकी जरूरत नहीं है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने टीवी सीरियल्स देखते हैं, कितना ज्यादा आप देखिए, बिग बॉस पसंद है, ये पसंद है, वो क्या है? लेग पुलिंग है, रोस्टिंग करना है। अब इसमें बड़ी बेसिक सी बात आती है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी
0: जी।
1: हर्ड मेंटालिटी का मतलब है कभी आप एप मैन थे, कभी पुराने जमाने में गुफाओं में रहते थे, तब आपको लीड करके चलने की जरूरत होती थी क्योंकि एक ग्रुप काम करता था कि कभी हाथी आ गया या शेर आ गया तो हम कैसे बचेंगे, तो मिलजुल करके हमें चलना चाहिए
0: जी।
1: और इसको हम हर्ड मेंटालिटी कहते हैं और एक उसमें लीडर हुआ करता था। अगर हम मान करके चलें, अगर हम अपने आप से अवेयर हैं, तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। मॉनिटर की जरूरत हमें तब है जब हमें ये पता है कि ये नहीं पता है कि हम क्लास में बोल रहे हैं, गलत है।
0: ओके
1: अगर हमारी वो हर्ड मेंटालिटी को हम हटा दें तो हमारे आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे कि दरानी जठानी में मैं बड़ी वो छोटी, उस पड़ोसी से मेरी कार बड़ी, या मेरा ऐसे ज्यादा बेटर और उसका ऐसे, ये हर्ड मेंटालिटी ही है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, किट्टी पार्टीज में भी ग्रुपिंग हो जाती है, छह लोग एक तरीके की सोच रखेंगे और 10 लोग एक तरीके की सोच रखेंगे और वो एक दूसरे को खींचते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड दिखेगा आपको, कोल्ड वॉर इसका विटनेस है। आज भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज या सोशलिस्ट इकोनॉमीज इसका विटनेस है। वो जो हर्ड मेंटालिटी है उसकी हमें अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम सब खुद को ही मैनेज कर लें तो क्या ऐसा है किसी को बताना पड़ेगा कि आप ये करिए? क्लास में अगर हर बच्चे को मालूम है मुझे चुप रहना है तो मॉनिटर की आवश्यकता है ही नहीं। आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं आपको पढ़ना है, आप एक मिडिल एज पर्सन हो फिर भी आपके एल्डर्स आपको घर में बताएंगे बेटा टाइम से रात को आ जाना, तो क्या आपको नहीं मालूम है? मालूम नहीं है ये बात नहीं, आप उसको रियलाइज नहीं करते, हम उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें क्या करना चाहिए।
0: तो मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं और ये मानसिक स्वास्थ्य हम सब लोगों के लिए जो इस विषय के बारे में नहीं जानते हैं उनको किस तरीके से ये समझाया जाए कि अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे आने वाली जो जिंदगी है उस पर हम एक बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं।
1: डूज एंड डोंट्स बहुत बेसिक है, जो पुराने जमाने के लोग जैसे रहा करते थे ना बिल्कुल वैसा ही जीवन होना चाहिए, सरल स्पष्ट। आप 2 झूठ बोलेंगे तो 10 और घुमाने पड़ेंगे, उसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा। स्पष्ट रहिए, जो नहीं कर सकते हैं उसको रफ होकर रूड होकर ना बोले, प्यार से बोले मैं इतना ही कर सकता हूँ, ऐसा ही मेरी कैपेसिटी है, तो उसको उसी वे में हैंडल करिए। अपने आप को लीपापोती करके प्रेजेंट करना कि हम बहुत अच्छे हैं हम इतना भी हैंडल कर लेंगे होगा है नहीं, फिर स्ट्रेस में आएंगे, फिर घर में आके सबको डांटेंगे, काम भी 4 खराब करेंगे और अपना हेल्थ भी डाउन करेंगे
0: और स्ट्रेस भी होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को जितना सरल रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे, गोल ओरिएंटेड रखेंगे कि आपने करना क्या है, आप चाहते क्या है, व्हाट इज योर टारगेट, तो आप उतने ही क्लैरिटी से अपनी डे टू डे रूटीन को भी करेंगे, उतना कियोस भी कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा।
0: इसके साथ जुड़े 2 प्रश्न मैं करूंगा, क्या जो गुस्से वाला होता है या ऊंचा बोलने वाला होता है क्या वो भी स्ट्रेस और अवसाद से ग्रस्त होता है?
1: बिल्कुल, इट इज अ रिस्पॉन्स, इट इज अ इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक लेवल से ऊपर हो जाती है, और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगी अटेंशन डेफिशिएंसी, अगर मान लीजिए घर के एक मेंबर को लगता है कि मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वो पक्का चिल्लाएगा
0: ताकि सबका ध्यान उस तरफ जाए।
1: इसको हम बोलते हैं नेगेटिव अटेंशन।
0: Okay.
1: ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिनको प्यार नहीं मिला, एक वो एक बड़ी कॉमन सी बात कही जाती है कि माँ से कम 6-7 बार प्यार से बैठे, उन्हें गले लगाएं ताकि आपकी बॉडी के जो हैप्पीनेस हॉर्मोन्स हैं उसमें से टैप हों, तो वो अब मिलता नहीं है, टाइम है नहीं किसी के पास, वही बात घुमा फिरा करके आती है, बेसिक रूटीन्स पर आइए, वापस उन चीजों पर जाइए, सिंप्लीफाई करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए चीजों को, तो आप उतना ही पीस में आ जाएंगे। और नेचुरली इन सबको कंट्रोल करने की, रेगुलराइज करने की, राइट डिसीजन लेने की पावर हमें 100% हमारा योग और आहार न्यूट्रिशन देता ही देता है। आप जितना तला हुआ खाएंगे, आप एक समोसा खाएं एक भटूरा खाएं, आपके ब्रेन का जो माइटोकॉन्ड्रिया कम से कम अगले 10 घंटे के लिए ऑलमोस्ट स्लीप मोड पे आ जाता है
0: जी।
1: तो वो आपको चूज करना है
0: कि आपको किस तरीके की जिंदगी
1: चाहिए।
0: जो प्रश्न मैंने सोचे थे आपसे पूछने के लिए, पर जो ये सब्जेक्ट है मानसिक स्वास्थ्य ये इतना बड़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी है, मैं इस प्रोग्राम में ये एक्सेप्ट करता हूं, शायद हमें भी इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है जो हम सबको सचेत होना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहिए। इसके साथ ही एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, जब हम रात को सोते हैं, सोते टाइम हम आराम की नींद कैसे लें? क्योंकि सोते टाइम अगर कोई विचार हमारे मन में या दिमाग में है उसको हम कैसे ऑफ करें, उसको हम अपने उस समय से अलग कैसे करें, इसका क्या कोई तरीका है?
1: बिल्कुल है, अगर आप संध्या समय में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं बेसिक जो सभी को आती भी होंगी, अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, इन सबको अगर हम करते हैं तो ब्रीदिंग से जो ब्रेथ है हमारे बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है ब्रेथ से
0: जी.
1: एक फैक्टर वो हम कर सकते हैं, मेक इट अ पॉइंट. अगर आप स्कूटर भी चला रहे हैं ना, मुझे लगता है अगर आप वहां पर भी डीप ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं ना, तो वो भी काम करता है. मैं इसका एग्जांपल देती हूँ. अगर मैं कहीं किसी ड्यूटी पर गई हूँ तो मैं वहां खड़े खड़े अपने फिंगर्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाती रहती हूँ. कुछ जो योग की क्रियाएं या ब्रीदिंग है जो मैं खड़े हुए वहां कर सकती हूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ. वो क्या है, मेरी चॉइस है कि मुझे खड़े रहकर इधर उधर देखना है या वो काम करना है. आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं. तो जब हम इन चीजों को रूटीन में लाते हैं, तो ये हमें कुछ एक बेटर स्टेट में ले आते हैं कि हम धीरे धीरे धीरे धीरे रिकूप कर सकें, वापस एक शांत और वेरी सोफिस्टिकेटेडली हम उस चीज को हैंडल कर लें. दूसरा इसमें आता है, रात को हम मोबाइल का कम से कम सोने से पहले 1.5-2 घंटा पहले यूसेज बंद कर दें, क्योंकि जो ब्लू लाइट है जो इसमें आपकी स्क्रीन टाइमिंग का जो हिसाब किताब है वो बहुत गड़बड़ा देता है आपकी हारमोनी को. आपकी बॉडी के सारे सिस्टम जो योग बताती है वो सूर्य और चंद्र नाड़ी से चलते हैं, जो कि सूर्य और मून की पोजिशनिंग से काम करते हैं. तो उसमें जैसे जैसे बॉडी को मैसेज मिलता है कि संध्या हो गई है, रात होने का समय है,
0: बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट मोड में आनी शुरू हो जाती है. तो इसका मतलब है कि अगर हमने मोबाइल सोने के समय तक यूज किया तो वो एकदम बॉडी जो है वो लाइव है, वो सोने के स्लीपिंग मोड में नहीं अभी है. नहीं गई है.
1: बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, वी आर नॉट मशीन्स कि हमने बटन दबाया ऑन हो गया, बटन दबाया ऑफ हो गया. इट टेक्स टाइम. आप है एक 50 trillion सेल्स का सेट
0: जी,
1: तो उसके अंदर एक एक सेल में इतनी मेमोरी है कि अगर मैं 8 storied buildings को मैं इकट्ठा खड़ा कर दूं, इतनी मेमोरी है जिसको हम बोलते हैं ना संचित कर्म
0: जी.
1: आपके जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो ऑटो मोड में एकदम से ऑफ हो जाएंगे. इट टेक्स टाइम, उसको टाइम चाहिए.
0: उसके लिए हमें एक प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे खास करके श्रोताओं को मैं एक बार फिर बताऊं कि जब हमारे सोने का समय है, तो श्वेता जी कह रही हैं कि अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप 2 घंटे पहले उसको यूज करना बंद कर दें, ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लीपिंग मोड में जाएगी. जब आप सोने जाएंगे तो आप चैन की नींद सो सकेंगे. श्वेता जी, मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं यहाँ पे. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, खास करके जो ये वाला सेक्शन है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में.
1: इससे पहले मैं एक बताना चाहूंगी,
0: प्लीज,
1: कि वही रात की जो नींद है
0: जी,
1: वाईफाई को प्लीज बंद करके सोइए, क्योंकि आपका ब्रेन भी उन सारे के सारे मैग्नेटिक मोड्स को पकड़ता है. आप ये मानकर चलिए, आपको क्यों बोला जाता है कि आपको किधर सिर करके सोना है, किधर सिर करके नहीं सोना है, ये सब चीजें हमें सिखाई गई हैं हमारे हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म में. वो क्यों सिखाई गई, क्योंकि आपकी बॉडी भी एक मैग्नेटिक पोल के साथ काम करती है, और अर्थ भी एक पूरी पूरी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना. तो अगर हमारा उसमें मॉडर्म चल रहा है तो वो भी आपके एंटीनास को लाइव रखेगा. और अगर हम बात करें तो हमारे पुराने जमानों में शिखा रखी जाती थी
0: जी.
1: वो एक तरीके का एंटीना ही था. वो आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की जब बातें हम बड़ी लॉन्ग उसमें चलते हैं, तो वो ये क्राउन चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो वाईफाई को शट डाउन करिए प्लीज. उससे आपकी बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड्स, हार्ट इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड ना, वो आपको पूरा ECG तो दिखाई देता है
0: जी.
1: आप उसमें देख सकते हैं. ऐसी हर बॉडी के ऑर्गन की अपने एक कार्यक्रम करने की सिस्टम की प्रॉपर फ्रिक्वेंसी है. तो वो 100% वाईफाई बंद करके सोना चाहिए. उस टाइम तो हमें जरूरत भी नहीं है
0: जी.
1: तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं, और इसमें हमें कोई टैक्स भी नहीं है
0: जी.
1: बहुत सारे माइग्रेन्स, हेडेक्स वहीं स्नब हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, अगर वाईफाई भी बंद हो जाए तो.
0: जब हम सोते हैं तो हम अपने मोबाइल को अपने सिराने के नीचे रखते हैं, वो कितना घातक है हमारे लिए.
1: पूर्णतः अब इसको मान के चले तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है. अगर आप फोन अपने आसपास भी रख के सोते हैं, एटलीस्ट आप थोड़ा दूर रखें. बहुत अच्छा तो ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं तो कमरे से बाहर रखें, उसको स्लीप मोड में डाल दें, एयरप्लेन मोड में डाल दें, कि कम से कम सिग्नल्स जो हैं वो आपकी बॉडी की हार्मनी को डिस्टर्ब करें.
0: आज का हमारा ये कार्यक्रम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है. एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा, तनाव और चिंता से बचने के लिए कौन सी साधारण आदतें अपनाई जा सकती है.
1: हमें अपने कामों को शॉर्टलिस्ट करके तैयार रखना चाहिए। हमारे पास हम अगर अभी एक बार बैठ जाएं और लिस्टिंग करना शुरू करें ए बी सी डी ई एफ जी एच, और उसके बाद हम इसमें से प्रायोरिटाइज करें
0: जी।
1: एक पहली कैटेगरी नंबर वन की निकालें, कुछ चार या पांच काम से ज्यादा काम निकलेंगे नहीं आपकी पूरी लिस्ट में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी।
1: उसके बाद सेकेंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड तक तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। होता क्या है, हम थर्ड फोर्थ ग्रेड के कामों में ही इन्वॉल्व रहते हैं और फर्स्ट सेकेंड रह जाते हैं, फिर वो हम मेंटल प्रेशर में आते हैं। स्ट्रेस इज नॉट अ वर्ड, मतलब अगर हम मान के चले ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैनेज हम करते हैं वैल्यूएबल्स को, असेट्स को, अच्छी चीजों को। मैनेजमेंट वर्ड वहीं से बना है, सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड वहीं से बना है
0: जी।
1: लेकिन जहां ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट इज नॉट अ थिंग टू बी मैनेज्ड, इट इज अ सिचुएशन। जब देर इज अ लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कंडक्ट,
0: स्ट्रेस इवॉल्व्स।
1: हाँ, आपने जो रूटीन छोड़ी, जो प्रायोरिटी वाला काम छोड़ा, वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, दैट विल बैकफायर, और फिर वो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में हार्म करेगा ही करेगा।
0: श्वेता जी, हम मुझे लग रहा है कि हमें एक और कार्यक्रम करना होगा ताकि हम और विस्तार से लोगों से जुड़ पाएं और उनको कुछ दिशा निर्देश दें। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अंबाला के लिए काम करते हैं और अंबाला के लोगों को हम एक सही दिशा दे पाएं। यहां पर गुंजाइश है एक और गाने की, और हम चाहते हैं कि हम अपने श्रोताओं को बातचीत के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करें। तो कौन सा ऐसा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं और हम श्रोताओं को भी सुनाएं?
1: एक हल्का फुल्का सा गीत लेते हैं, एक प्यार का नगमा है।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं श्वेता जी का ये मनपसंद गीत।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो इतस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आज हम बात कर रहे हैं श्वेता शाह जी से। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए संतुलित आहार की भूमिका कितनी जरूरी है।
1: खाने पीने से ही हम अपने शरीर को रेडी करते हैं
0: जी।
1: आप ज्योग्राफिकली भी या अगर दूसरी तरह से भी एनालाइज करें, मोमोज हमारे कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट नहीं था
0: जी।
1: और उसके साथ वो जो बहुत तेज मिर्च और लहसुन की चटनी मिलती है वो भी नहीं था। उसका कारण क्या है कि जिस जगह से वो आया है डेलिकेसी, वहां पर कच्चा मैदा डाइजेस्ट हो जाता है, वहां की बॉडी के, वहां के जो टेम्परेचर इतने मिनिमम में रहते हैं, वहां पे बॉडी को एक्टिव रखने के लिए उनको तेज मिर्च चाहिए
0: जी।
1: लेकिन जो हमारे यहाँ के लोगों का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और यहाँ का जो रहन सहन है, उसी हिसाब से हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें इतनी तेज मिर्च खाने की जरूरत नहीं है। हमारा पेट उतना, हमारे जेनेटिकली हमारी इतनी बॉडीज अडाप्टिव नहीं है कि हम उस कच्चे मैदे को अच्छे से पचा सकें। तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए कि हम उन चीज़ों को कम खाएं। जितना तेज मिर्च खाएंगे, जितना मसाले तेज करेंगे, वो उतना ही आपकी बॉडी में एंजाइटी क्रिएट करेंगे, हाइपरनेस क्रिएट करेंगे। जितना ब्लैंड खाना होगा उतना ही शांत इंसान आपको दिखाई देगा।
0: यानी कि उसको हम तामसिक खाना बोल सकते हैं।
1: यही क्लासिफिकेशंस इसीलिए उन्होंने बनाई है ना हमारे शास्त्रों ने कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसका कारण है। अब मान लीजिए कोई भी चीज जो तामसिक बोली गई, अब इस बारे में बात की जाए तो शायद मुझे लगता है ये बेस्ट चीज है इस बारे में बात करने की। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रहता है हर समय, वेजिटेरियन डाइट लें या नॉन वेजिटेरियन डाइट लें या कैसे करें। पहली चीज साइंस, बेसिक साइंस, कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट प्लांट ने कन्वर्ट किया एनर्जी को, प्लैनेट पे एनर्जी सन से ही आ रही
0: जी।
1: है, उस प्लांट फूड को अगर आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं तो आप पहले फेज पर हैं। अगर उस प्लांट को पहले डियर ने खाया, डियर से लॉयन ने खाया, तो क्या लॉयन के पास उतनी एनर्जी जाने वाली है?
0: मेरे हिसाब से नहीं,
1: बिल्कुल भी नहीं। तो जितना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उतना ही आपके अंदर मॉलिक्यूलर, जिसको हम योग की भाषा में कहें तो प्राण शक्ति क्षीण होती जाती है
0: जी जी।
1: तो अगर हम पहले तो अपने फूड को प्लांट बेस्ड रखें, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए हम क्रिलियन फोटोग्राफी की बात करते हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी जो हमारे ऋषि मुनियों ने आमतौर से आंख बंद करके ही सब कुछ देख लेने का जो उनकी कला थी, वो अब थोड़ा साइंस ने भी अपने आप को डेवलप किया है। क्रिलियन फोटोग्राफी रहती है, एवरीबडी कैन सर्च, आप देख सकते हैं, सब गूगल पे आपको मिलेगा
0: जी।
1: तो अगर आप उसकी पिक्चर्स देखें तो एक रॉ फूड की, जो अगर आप एप्पल काटें या कोई भी फ्रूट काटें या कोई भी ऐसा रॉ फूड जो आप सीधा खाने वाले हैं, उसके अराउंड में एक वॉयलेट एनर्जी का लाइन दिखता है,
0: ठीक है,
1: जो फुली स्पार्कलिंग रहता है, फुल ऑफ एनर्जी,
0: ठीक है।
1: वही अगर आप लोफ ऑफ मीट में देखेंगे तो यू विल फाइंड हार्डली एनी एनर्जी।
0: ओके,
1: हार्डली एनी एनर्जी। तो आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ जुबान का स्वाद ले रहे हैं, खाना तो जा नहीं रहा अंदर। दूसरी बात आती है फ्रिज में रखा हुआ खाना
0: जी।
1: 40 मिनट्स के बाद खाने की वैल्यू, जो हमारा जो यूनिवर्स को समझाने की जो बेसिक हमारा सनातन का तरीका है, कथाओं से शिव तत्व जो है वो तोड़ने का तत्व है, तो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो साइंस कहता है डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो फूड की जो एथिक वैल्यू है, जो उसमें गुणवत्ता थी, प्राण शक्ति थी, वो घट गई। और दो दिन बाद आप फ्रिज से निकाल के खा रहे हैं, 6 दिन बाद निकाल करके खा रहे हैं, तो वो इट इज यूजलेस, उसमें कुछ है ही नहीं,
0: न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसकी खत्म हो गई।
1: कुछ नहीं बचता।
0: आपका कहने का मतलब है कि हम जो भी कुछ खाएं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, अगर आप उसको, आप मान के चलिए पाठ पूजा को अगर हम छोड़ भी दें, किसी भी गुरुद्वारे में, मंदिर में खाना क्यों इतना अच्छा लगता है लोगों को भंडारे का, कारण क्या है, उसी समय बना और उसी समय कंज्यूम हो गया
0: जी।
1: तो जितना फ्रेश कुक्ड फूड होगा, पहले तो पकाना ही कम चाहिए, चलो जितना भी, और हम इतना साधु संत तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही इस मोड में आ जाएं, बट जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए फ्रेश फूड इनटेक एंड नॉट मोर देन अ डे। मतलब वो जो फ्रिज का कॉन्सेप्ट है ना, उसकी हमें जरूरत नहीं है,
0: नहीं है।
1: जो बना है जैसे बना है उसको विद इन अ डे कंज्यूम करिए,
0: यानी कि उतना ही बनाइए जितनी की जरूरत है, नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा उसको बनाया जा सकता है, ताजा बनाया जाए और ताजा खाया जाए। इसके साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज के डेट में मोटापा है उसको कम करना है या उसका बढ़ना है, तो क्या जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्या उसका उसके साथ कोई कनेक्शन है?
1: बिल्कुल है। अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम लोग आपस में लैंग्वेज में स्लैंग लैंग्वेज में बात करते हैं कि इसको तो कुछ भी खिला दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको तो घी का पीपा पिला दो तब नहीं फर्क पड़ने वाला और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पानी पीते हैं तभी हमें बहुत मोटापा चढ़ता है। उसका कारण क्या है?
0: इसका कारण
1: कि आपका मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट है बॉडी का। हर बॉडी अपने हिसाब से जो आप खा रहे हैं उसको एसिमिलेट करने के लिए पहले तोड़ती है
0: जी।
1: तो उस तोड़ने के प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है फिर आ जाती है बात की सही खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, ताकि अगर एक सिंगल, मैंने पहले भी बताया कि अगर एक सिर्फ मैग्नीशियम कम हो जाएगा ना तो आप सो नहीं पाएंगे रात को। तो वो ही है, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर एक चीज होगी तो दूसरी अब्सॉर्ब होगी। डी, विटामिन डी होगा तो आपका कैल्शियम जनरेशन प्रॉपर होगा, घुटनों की दर्द, बैक एक, ये सब कनेक्टेड है। तो आपको सब चीज चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए और सही टाइम पर चाहिए, जिससे आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो सही चले। कुछ योगिक क्रियाएं भी होती हैं जो अगर गड़बड़ा चुकी हैं तो उनको हम सेट
0: किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उन ये आपका शुगर है वो क्या है, आपका एक ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, जो नेचुरल बनना चाहिए था वो आर्टिफिशियली लेना पड़ रहा है
0: जी।
1: तो वो सारे जो चीजें हैं अगर हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं
0: तो हम उसको अच्छा बना सकते हैं। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट्स को, योग, मानसिक स्वास्थ्य और न्यूट्रिशनल वैल्यूज, जो हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, हम अपनी दिनचर्या में किस तरीके से इन तीनों चीजों का समावेश करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं?
1: एक घंटा आप निकालिए, उसमें डिसाइड करिए आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, सही खाना है। फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को जरूर ऐड करिए, वो बेस्ट हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए
0: जी।
1: फिर उसके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें, माइक्रोवेव का काम कम करें, वाईफाई का काम कम करें, अपने इंटरनेट का यूसेज लिमिटेड करें, स्क्रीन टाइम को थोड़ा घटाने की कोशिश करें। आप जो भी देखते हैं वो क्रिएट करते हैं, आप जो भी समझते हैं वो अपनी बॉडी में एम्पलीफाई करते हैं। कुछ कहा भी जाता है कि हस्बैंड वाइफ भी इतने सालों बाद भाई बहन से दिखते हैं, उसका रीजन क्या है? एक जैसा न्यूट्रिशनल डाइट जा रहा है
0: जी।
1: एक जैसा एनवायरमेंट है, एक जैसी एथ्रिसिटी हो जाती है, तो वो जो एथ्रिक कनेक्शंस हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, एक से हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर्स भी एक से दिखने लगते हैं। तो वो जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी रूटीन्स को, खान पान को इस तरह से रखें कि आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल रहे। डूज एंड डोंट्स में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालूम सबको सब कुछ है लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और डिसाइड करते हैं तो विल पावर नहीं शो कर पाते हैं।
0: तो अगर हम इसको सही दिशा में अपनी जिंदगी को लेके चलें, अपने बॉडी को लेके चलें, तो क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ सकती है?
1: बिल्कुल बढ़ सकती है। पुराने आज से 30 साल पहले वाली जो जनरेशन थी वो आपसे ज्यादा काम कर लेती है जो आज के 40 इयर्स के लोग काम कर सकते हैं
0: जी जी।
1: उसका कारण यही है कि उन्होंने कुछ आपसे बेटर खाया है। आप देखिए कितनी बड़ी मिथ है कि देसी घी में खाना जो बनाया जाता है, वो पहले बुजुर्ग होते थे उबालते थे सिर्फ दाल और उसके बाद ढेर सारी घी ऊपर से डाल के देते थे। उसका कारण क्या है? आप जब घी में सब्जी बनाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खत्म हो जाता है, वो आपकी वैल्यूलेस जैसी चीज हो जाती है।
0: अच्छा।
1: तो आप उसको कच्चा खाए। आप जैसे पिनिया बनाते हैं तो तल तल के बनाते हैं, आप सारी चीज उसमें फ्राई करते हैं, आप उसको रोस्टेड वे में, आई माई सेल्फ मेक द होलसम डाइट ऑफ न्यूट्रिशन, मेरा पूरा एक रेंज भी है उसके लिए। तो वो आपको सारा कुछ देख करके, पुराना टाइप में जैसे छाछ का कंजम्पशन बढ़ाइए, लस्सी का कंजम्पशन बढ़ाइए, अपने कोल्ड ड्रिंक्स को कट डाउन करिए, वही है बेसिक साइंस है। CaCO3 आपका जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम से बनता है, मतलब कि आपकी हड्डियां हर बार खत्म होती हैं जितनी बार आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो उसको सब्स्टिट्यूट करिए, वहीं स्नब करिए कि नहीं, इसकी जगह मैं जलजीरा उठा लेता हूँ, इसकी जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ,
0: नींबू पानी
1: ले सकते हैं आप, बाहर जाएं गन्ने का जूस लें, जहां जो पॉसिबिलिटी है आप उसको ऑप्ट करें। ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि आप बिल्कुल ना करें, लेकिन मिनिमल कर सकते हैं,
0: कम कर सकते हैं
1: बिल्कुल, वो आपको कुछ फायदा दे।
0: श्वेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें बताई और मुझे ऐसा लगता है कि हमें आपको फिर आमंत्रण देना होगा। बहुत सारी बातें आज पूरी नहीं होगी क्योंकि समय हमें बता रहा है कि समय पहले ही पूरा हो चुका है और आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही अम्बाला के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: इस चीज को मान करके चलें कि मेरी तहे दिल से इच्छा रही है और मैं शुरू से ये काम करती भी रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझें कि वो खुद के मॉनिटर बने। अगर वो खुद के मॉनिटर हैं तो उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: अगर खुद का मालूम है कि ये चीज सही है और ये मुझे करनी है तो वो खुद से भी करेगा, उसके लिए वो कुछ भी ढूंढेगा, कोई भी कंटेंट भी पढ़ेगा, कुछ भी रिसर्च भी कर डालेगा। अगर किसी को कोई सूट बहुत पसंद है ना तो अल्टीमेटली वो हस्बैंड को कन्विंस कर ही लेगी कि हाँ भाई मुझे तो लेना ही लेना है
0: जी।
1: तो इट द मीन्स एंड मेजर स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू डिसाइड। आपका लाइफस्टाइल आपके चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है तो आपको चूज करना है करेक्ट तरीके से, वही मेरा मैसेज है और वो हर चीज पर इम्प्लीमेंट होता है
0: जी। अगर अम्बाला का कोई भी व्यक्ति आपसे कोई राय या जानकारी लेना चाहता है, क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है, प्लीज वो भी बताएं।
2: जी बिल्कुल, मैं खुद एक अपनी फूड रेंज आइटनरी बनाती हूँ जिसमें मैं लोगों की डाइट एंड न्यूट्रिशन के लिए उस ऑर्गेनिक सल्फरलेस नॉन फ्राइड या नॉन प्रिजर्वेटिव मेमोरी बाइट्स इस तरीके की जो आइटम्स हैं उसमें रहती हैं, जो कि कुछ फ्रूट क्रशेस हैं या चटनीज हैं, डिटॉक्स वाटर्स हैं, पिन्नीज हैं, बाइट्स हैं। और इन सब के लिए मुझे इस नंबर पर 3 से 8 बजे तक कांटेक्ट किया जा सकता है और वो नंबर है 8307000025 यानी 8307000025।
0: अम्बाला कैंट में जो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है, यहाँ आके आपको कैसा लगा?
1: बहुत बढ़िया लगा, एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जा सके कि वो कम से कम अपने प्रति जागरूक हो जाएं, जिस नींद में या जिस सुषुप्ति में वो हैं उससे थोड़ा सा
0: वो जाग जाएं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि जो अब बात आप कह रहे हैं कि बहुत बुरा लगता है कि छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है
0: जी,
1: तो वो चीज अगर घटाई जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम अपने श्रोताओं को आपके एक और मनपसंद गीत के साथ छोड़ना चाहेंगे, आप उस गीत के बारे में बताएं और उसके बाद हम लेते हैं इजाजत।
1: हाँ, वो गीत है बड़े अच्छे लगते हैं।
0: तो श्रोताओं आप मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
1: जय भारत।
3: बड़े अच्छे लगते हैं
4: क्या?

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। आज के मेहमान थे श्रीमती श्वेता शाह। रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अप

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
3: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
4: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
3: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो पप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
4: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
3: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
4: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
3: गणपति बप्पा मोरिया।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, आवाज की दुनिया के दोस्तों को एक बार फिर से नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर कौशल किशोर, नेचुरोपैथ। ये अम्बाला से नेचुरोपैथ के द्वारा पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा। और मैं तो इनका मुरीद रहा हूं, इनके ज्ञान का, नेचुरोपैथी का जो इनको ज्ञान है और जो ये ज्ञान लोगों के बीच में बांटते हैं, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। एक और इनकी कला कुछ दिन पहले मेरी नज़र में आई। इन्होंने मुझे एक कहानी उपलब्ध कराई, दुर्लभ प्रेम की वो कहानी वास्तव में एक मिसाल थी। और दोस्तों, आइए आज मैं अपने परम मित्र डॉक्टर कौशल किशोर नेचुरोपैथ की उपलब्ध कराई हुई ये कहानी आज आप सबको सुनाता हूँ, और आप भी सुनकर देखिए और फिर बताइएगा भी। क्या इसी को ही कहते हैं ना प्यार, जहाँ आत्माएं एक दूसरे को चाहती हैं, जहाँ रूहों का मिलन होता है और जहाँ रूह दूसरी रूह के बिना चैन नहीं पाती। उन रूहों के प्यार को ही वास्तव में प्रेम की संज्ञा दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर कौशल किशोर जी की द्वारा उपलब्ध कराई गई ये कहानी। इस कहानी का शीर्षक है दुर्लभ प्रेम। सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया, कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? बुजुर्ग ने कहा, मेरे अंगूठे के टांके कटवाने आया हूं, मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुंचना होता है, इसलिए जल्दी आया, सॉरी, वेरी सॉरी। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही उन वयोवृद्ध का निवास स्थान था। जब भी जरूरत पड़ती वो डॉक्टर के पास आते, इसलिए डॉक्टर उनसे भली भांति परिचित था। उसने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो और दिखाओ जरा अपना अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टांके खोले और कहा, दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूं कि कहीं चोट पर कोई संक्रमण ना हो। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु ये डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले आदमी का और बहुत दयालु भी थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा के पूछा, दादा आपको कहाँ पहुंचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई तो मैं, चलिए आपको छोड़ आता हूं। वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा, नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले बहुत कम डॉक्टर होते हैं। दादा खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर के कहा कि दादा नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा, नहीं बेटा नहीं, मैं तो नाश्ता यहां कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को। तो वो कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुंचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वो तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वो अस्वस्थ है, तो नर्सिंग होम में है ना। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ है? वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, यानी उसकी याददाश्त चली गई है, पिछले 5 साल से वो मेरे को पहचानती भी नहीं है,
मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ, तो फटी आंखों से वो शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। याद रखें, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम, ये दुर्लभ प्रेम है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। और कबीर जी ने लिखा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बाजार में नहीं मिलता ये। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उसको नाश्ता करवाने जाते हो, आप इतने वृद्ध हो, आप थकते नहीं, ऊबते नहीं हो? उन्होंने कहा, मैं 1 बार नहीं, मैं 3 बार जाता हूं। डॉक्टर साहब, उसने मेरी जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूं। उसको देखता हूं तो मेरा मन भर जाता है, मैं उसके पास बैठता हूं तो मुझ में शक्ति आ जाती है, अगर वो ना होती तो अभी तक मैं बिस्तर पकड़ लेता। लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी संभाल करनी है, इसलिए मुझ में रोज ताकत आ जाती है, उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूं तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूं, यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही कुछ और है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूं। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? पूछो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दादा वह तो आपको पहचानती भी नहीं, ना तो आपके सामने वह बोलती है ना हंसती है, फिर भी तुम उससे मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे वो दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब वो नहीं जानती कि मैं कौन हूं, पर मैं तो जानता हूं ना कि वो कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखें भी भर आई। कहानी तो पूरी होगी, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता को प्रेम करो, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं अपने पिता के लिए साठी बुद्धि न्याठी, उनको यह कथा 10 बार पढ़वाना। ये शब्द, वो नहीं जानती कि मैं कौन हूं पर मैं तो जानता हूं, ये शब्द शायद परिवार में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर दें। अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखे, अपने वो हैं जो तकलीफ में साथ दिखे। इसलिए लव योर पार्टनर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस समय हमें सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता पर। रेडियो वितस्ता, हम सफ़र जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज़। दिल से धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।

इस दिल की बस्ती में और अक्सर बीते मौसम की मदहोशी रूह में उतर जाती है। काश तुम मेरे साथ रहते, मेरे पास होते, मैं तुम्हें अपने दर्द से रोशनास कराता, तुम्हें अपने जख्मों की गहराई से वाकिफ कराता, तुम्हें अपने हमरा दूर तक ले जाता, जंगल के उस पार जहां रोज सूरज आसमां से उतरकर मखमली फर्श पर रोशनी के संग अपनी आप बीती सुनाता है।

एक सन्नाटा है जो मेरी उम्र के सिमटे हुए पलों की रहनुमाई करता है। तुम्ही ने तो सिखाया है चिराग बुझाने का तरीका भी। तुमने यह भी कहा था कि खुदा भी अंधेरों में सफर करते हैं। तुम्ही ने तो सिखाया है चिराग बुझाने का तरीका भी। तुमने यह भी कहा था कि खुदा भी अंधेरों में सफर करते हैं, इसीलिए एक सन्नाटा रखा है मैंने अपने आसपास।

हर बार आते रहे, मुझे दिलासा देते रहे कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास मेरी धड़कनों की तरह। और एक हकीकत यह भी है कि उस जहां से कोई वापस लौट के नहीं आता है, जो चला गया फना हो गया।

दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चाहेंगे आपसे इजाजत। इजाजत।

0: हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: पहलू और गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार।

हजारों की भीड़ में कब वो अपना सा लगने लगा, जिसके बिना ना आंखों में ना दिल में करार। खोया खोया सा मन एक ही सवाल करता है, कब ये मिटेगी दूरी, कब होगा फिर दीदार इनका।

जीवन एक उपवन है, इस उपवन में रंग बिरंगे फूल है, उनकी सुगंध है, चहचाते परिंदे हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं, नाचते मयूर हैं, गीत गाती कोयल है, सप्त रंग आकाश भी है, जगमगाते सितारे हैं, नौ रस से भरे सप्त सुर हैं, पल पल में घटता ढलता अनुराग है, ये सब हमारे कंधों के बोझ को हल्का करते हैं।

पत्तों की सरसराहट, हवा की खुशबू, फिजा की रंगत और मोहब्बत का जादू। हर शय हसीन हो जाता है, हर मुकाम जवान हो जाता है। तुम्हारा करीब होना इश्क की नई दास्ताने गढ़ता है, तब चांद भी जलकर कतरा कतरा पिघलता है।

0: पहले।
1: प्यार छलकता है दिल में मेरा, मधुर तेरा संग पाकर। नैनों से नैन मिले तो छाई गालों पर लाली, कभी वो आंखों से बात करते हैं और मुस्कुरा के हाले दिल बयां करते हैं। कभी सुर्ख होठों का कातिल अंदाज दिल चुराता है, तो कभी उनका छू जाना ही उनके बहुत करीब ले आता है।
2: कसम के कहते हैं।

0: रूठने मनाने वाले फूल बेहिसाब खिले होते हैं। दोस्ती में जिनकी खुशबू से सराबोर होती है सारी पकड़िंडी और महका करते हैं दिन रात। हाँ, इसकी राह इतनी आसान भी नहीं होती क्योंकि इसमें जुदाई के पत्थर भी होते हैं। मुझे मेरी जुदाई की उम्र याद तो नहीं, पर ये दर्द अब पुराना हो चला है।
1: लोगों के प्यार के किस्से सुनकर हंसता रहता था, तुम संग आंख लड़ी तो मैं जाना शायर सच कहता था कि रूठे रब को मन

कितनी जफाओं और वफाओं को क्या कहूँ और कैसे बयां करूँ। बीते लम्हों की वो यादें, कभी मुस्कुराहट बनकर खिला करती थी होंठों की वो गलियां, गलीचे अब बेगाने से लगते हैं। सामने वो है फिर भी दीदार को तरसती है आंखें। जफाए दोस्त हो या गम, मिले जमाने से हमारे दिल को अब तड़पना ही हर बहाने से।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान हैं डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा, प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। आपसे रूबरू हूं कार्यक्रम इनसे मिलिए में, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली। आज मुलाकात करते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता से जिन्होंने शिक्षा के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया है। ये वो लोग हैं जो समाज और जरूरतमंदों के लिए जीते हैं, उनकी मदद के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं। आइए मुलाकात करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान से जो स्टूडियो में आ चुके हैं, और आज के मेहमान है डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी। ये पूर्व प्रधानाचार्य यानी फॉर्मर कॉलेज प्रिंसिपल रह चुके हैं। ये को चेयरमैन है स्नेह स्पर्श के, जो एक पैलेटिव केयर यूनिट है अंबाला छावनी में। कला के सभी विधाओं से कलात्मक रिश्ता है इनका, और कलाकारों को प्रोत्साहित समय समय पर कर देते हैं। करते हैं स्वागत आज के मेहमान डॉक्टर वी के मल्होत्रा जी का स्टूडियो 90.0 एफएम में।
1: धन्यवाद भारत स्पोरी जी कि आपने अपने रेडियो वितस्ता, जो अंबाले का प्रथम तथा एकमात्र कम्युनिटी रेडियो है, उसमें मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।
0: शायद ही कोई व्यक्ति हो अंबाला में जो आपको ना जानता हो, फिर भी हमारे श्रोताओं के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने बारे में कुछ कहें।
1: मेरा जन्म 1954 में अमृतसर में हुआ, लेकिन मेरा पालन पोषण और शिक्षा अधिकांशतः अंबाले में हुई। कुछ समय दिल्ली में भी स्कूलिंग की शिक्षा ली, और हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी, लेकिन मैट्रिक बीए एमए मैंने सब अंबाला से ही की। पीएचडी मैंने कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से की, और एमए में मैंने सारी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान हासिल किया था, इसलिए मुझे गोल्ड मेडल भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने दिया था। और एमए करते ही तुरंत मेरी यहाँ के लोकल गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज में अपॉइंटमेंट भी हो गई परमानेंट लेक्चरर की, और मैंने वहां 29 साल तक लगभग मैंने जीएमएन कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र विषय को पढ़ाया है।
0: पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समय समय में बाहर से तो बदलाव आते हैं, पर अगर हम एकेडमिक तौर पे देखेंगे तो शायद उनमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आते हैं। तो कितना सरल और कितना मुश्किल है पॉलिटिकल साइंस बच्चों को पढ़ाना?
1: पॉलिटिकल साइंस आमतौर पे आर्ट्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं। यह एक सामाजिक विज्ञान है। किसी समय में यह बहुत लोकप्रिय होता था, अब भी है। प्रत्येक कॉलेज में जो भी बीए के छात्र होते हैं उनमें से मैक्सिमम के पास ये विषय होता है। और ये कहा जाता है कि राजनीतिक शास्त्र प्लेटो और अरस्तु के जमाने से पढ़ाया जा रहा है, इतना पुराना ये विषय है, और राजनीति की बारीकियां इसमें बताई जाती हैं। लेकिन आजकल जमाना आ गया टेक्निकल विषयों का, कंप्यूटर का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल साइंसेज का, तो उनके आगे बेशक ये कुछ फीका पड़ चुका है, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना, चाहे विज्ञान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, अंततः उन्हें सबको राजनीतिक सत्ता के अधीन ही रहना पड़ता है। तो उस वे में राजनीति ही सारी तय करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, टेक्निकल पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज। तो राजनीति का जीवन में एक सुप्रीम स्थान रहा है और रहेगा। डोमिनेंट राजनीति ही करती है, राजनीतिक नेता ही करते हैं, लीडर्स ही करते हैं, और इसीलिए इस विषय की इम्पोर्टेंस महत्व सदा रहेगी।
0: जो राजनीति शास्त्र है, क्या इस पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में राजनीति के बारे में पूरी तरह से पढ़ाया जाता है?
1: हाँ, पढ़ाया जाता है सब तरह की, जैसे पॉलिटिकल थॉट पढ़ाया जाता है कि जैसे अरस्तु क्या सोचते थे राजनीति के बारे में, प्लेटो क्या सोचते थे, मैकियावेली क्या सोचते थे, टीएच ग्रीन क्या कहते थे, थॉट्स पढ़ाया जाता है। फिर विभिन्न देशों के संविधान पढ़ाए जाते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन कहा जाता है जननी ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके संविधान, वहां की राजनीति पढ़ाई जाती है, फ्रांस की राजनीति, चीन की राजनीति। तो ये इस तरह के पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग ब्रांचेज हैं। फिर भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, भारत का संविधान कैसे चलता है, ये पढ़ाया जाता है। और फिर उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, वो भी आजकल बहुत जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होना विभिन्न देशों में, विदेश नीति। तो ये सारी चीजें राजनीतिक शास्त्र में पढ़ाई जाती है।
0: हमने तो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी भारत की राजनीतिक जो जानकारी है वो ये सब्जेक्ट कितना देता है, और हमारे जो स्टूडेंट्स है उनको किस लेवल पर ये तैयार कर देता है ताकि आगे हमारी देश की राजनीति में वो सक्रिय भाग ले सके।
1: राजनीतिक शास्त्र विद्यार्थियों को पूर्णतः राजनीति के बारे में बताने की कोशिश करता है कि भारतीय राजनीति क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या गुणदोष हैं, और उसमें फिर हम तुलना करके बताते हैं कि भारतीय राजनीति अमेरिकन पॉलिटिक्स से कैसे भिन्न है, या भारतीय राजनीति ब्रिटेन की राजनीति से कैसे भिन्न है, चीन की राजनीति से कैसे भिन्न है। और यदि कोई विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ता है, समझता है, तो एक बहुत अच्छा राजनीतिक नेता और एक शासक बन सकता है।
0: आपने अभी जिक्र किया स्वर्ण पदक का, जो आपको अपने एकेडमी क्वालिफिकेशन के दौरान मिला, तो ये कौन सा साल था और कहां पर ये आपको मिला था?
1: मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में की थी एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट से, फिर उसके बाद जीएमएन कॉलेज में मैंने एमए की राजनीतिक शास्त्र में, और एमए प्रथम वर्ष यानी कि एमए प्रीवियस में भी मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रहा, और एमए फाइनल में भी मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रहा। प्रीवियस में फर्स्ट आने के लिए सिल्वर मेडल और फाइनल में आने के लिए गोल्ड मेडल मुझे मिला। इसी वजह से उस समय हमारे प्रिंसिपल होते थे जीएमएन कॉलेज के पीसी जोशी साहब, बड़े प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, उन्होंने मेरी वहां अपॉइंटमेंट कराई एज ए लेक्चरर। सिलेक्शन में बेशक पूरी सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें गवर्नमेंट के लोग भी थे, यूनिवर्सिटी के भी, तो मेरे मेरिट के आधार पर वहां चयन हुआ, और मैंने फिर 29 साल वहां सेवा की जीएमएन कॉलेज में, एचओडी के पद तक पहुंचा, और फिर वहां से मैंने 2005 में नौकरी छोड़ी क्योंकि मेरी सिलेक्शन हो गई मारकंडा नेशनल कॉलेज शाहबाद में एज ए प्रिंसिपल। फिर मैंने वहां 9 साल प्रिंसिपलशिप की, वहीं से मैं रिटायर हुआ,
0: वहीं से आप सेवानिवृत्त हो गए। दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे मैं करना चाहता हूं कि आज आप हमारे स्टूडियो में लगभग 2 साल के बाद आए हैं, तो कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आ जाके?
1: आपके स्टूडियो में आकर बहुत खुशी हो रही है कि आपने 2 सालों में बहुत उन्नति की है, और पहले ये आपका एक इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर रेडियो मात्र था, लेकिन अब आपको भारत सरकार ने, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, उसने आपको बकायदा अप्रूवल दी है, और यहाँ अम्बाला के अंदर रेडियो स्टेशन स्थापित करने की, कम्युनिटी स्टेशन स्थापित करने की, और ये अम्बाला में आपने एक इतिहास रच दिया, ये एक हिस्टोरिक इवेंट है अम्बाले के लिए, बहुत महत्व कि अम्बाले में कोई पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसका सारा श्रेय आपको जाता है, और ये इतिहास में आपका नाम अमर हो गया कि अम्बाले में किसी कोई पहला यदि रेडियो स्टेशन किसी ने बनाया तो वो भारत सुपोरी जी ने बनाया।
0: सर ये श्रेय तो मैं अम्बाला को देना चाहूंगा और अम्बाला के लोगों को देना चाहूंगा। जब 34 वर्ष पहले मैंने इस जगह पर अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, तो उस जिंदगी को यहां तक लाने में मेरा हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि अम्बाला ने मुझे इन 34 वर्षों में बहुत कुछ दिया, मैं अम्बाला को क्या दे सकता हूं। तो मैंने हमेशा कोशिश की है थिएटर के माध्यम से, जिसके साथ आप हमसे हमेशा जुड़े हैं, और इस आवाज के माध्यम से हम अम्बाला के लोगों को एक आवाज का एक मौका दें ताकि वो अपनी बात को सब तक पहुंचा सके। तो ये श्रेय तो पूरे अम्बाला को जाता है जिन्होंने मुझे यहाँ एक्सेप्ट किया और मेरी बात आज तक वो सुनते और समझते रहे।
1: ये आपकी महानता है, बड़प्पन है कि आप अम्बाला वासियों को श्रेय दे रहे हो, लेकिन इतिहास में ये यही लिखा जाएगा कि भारत सुपोरी के प्रयासों से अम्बाला में पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बना, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और सभी लोगों को आपके इस उद्यम में जो है वो आपका समर्थन करना चाहिए।
0: हमारी वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी जो रजिस्टर्ड एक संस्था है, जिसके लिए अम्बाला कैंट के लिए, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के लिए ये कम्युनिटी रेडियो हमें मिला है, तो जो कार्य हमने थिएटर के माध्यम से किया है वही कार्य आज भी हम रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो हमारी जिंदगी को बदल देता है, उसमें बदलाव ले आता है। तो कोशिश हमारी यही है कि लोगों तक हम किसी न किसी तरीके से उनके दिल तक पहुंचे और उनकी जिंदगियों में कुछ बदलाव ला सके।
1: हाँ बिल्कुल, आपका प्रयास बिल्कुल ठीक है, और उसमें आपको सफलता जो है वो पूरी मिल रही है। व्यर्थ थिएटर के आपके, हमने थिएटर के जो प्रोग्राम भी देखे हैं वो भी योगदान आपका सराहनीय है, और ये भी जो है ये तो उससे भी बढ़कर है। और इससे अंबाले के कलाकारों को, अंबाले के कवियों को, गीतकारों को, लेखकों को, लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा जो अब तक उनको नहीं मिल पाता था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप शिक्षा और शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ आपने पूरी जिंदगी लगाई, शिक्षा हमारे देश को कितना आगे ले जा सकता है और कितना जरूरी है हमारे देश की उन्नति के लिए?
1: शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। ये एक अभी तक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें अभी पावर्टी बहुत है, पिछड़ापन बहुत है, और शिक्षा के माध्यम से ही ये पिछड़ापन दूर हो सकता है, और शिक्षा के माध्यम से ही भारत विकासशील से एक विकसित देश बन सकता है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं अगले कुछ सालों में इसको एक पूरा डेवलप कंट्री बनाना। तो शिक्षा ही उसका साधन जो है वो बन सकता है। और शिक्षा कहते हैं ना, एक ऐसा आभूषण है, ये एक ऐसी दौलत है, एक ऐसा खजाना है जो कोई नहीं छीन सकता। जो एक बार मनुष्य ने हासिल कर ली, किसी व्यक्ति ने हासिल कर ली, तो उसके पास ही रहेगी और उसको जीवन में वो काम आएगी। बाकी खजाने चोरी हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा जब एक बार आप ले ली, डिग्री ले ली, वो आपके नाम के साथ जुड़ी रहेगी जब तक आप जिंदा है।
0: सर, इसके साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि शिक्षा एक ऐसी चीज है हमारे पास, जितना इसको लोगों के साथ शेयर किया जाए उतनी ही इसमें बढ़ोतरी भी होती है। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता आपकी बात गौर से सुन रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि आपसे ये जानना चाहूँ कि संगीत के साथ आपका कितना रुझान है, आप संगीत कितना सुनते हैं, और आसपास के वातावरण में आपको संगीत की क्या भूमिका लगती है?
1: जीवन के सुखी बनाने के या जीवन में खुशी प्राप्त करने के कई साधन हैं, या जीवन को स्मूथ करने के कई लुब्रिकेंट्स हैं, उनमें से एक संगीत भी है
0: जी।
1: और संगीत के प्रति मेरी रुचि बचपन से ही रही है। जब पहले रेडियो होते थे, फिर ट्रांजिस्टर आए बड़े बड़े, फिर छोटे ट्रांजिस्टर आ गए, फिर और छोटे पॉकेट आ गए, तो जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो डांट भी खप लगती थी पेरेंट्स से भी, सारा दिन आप ट्रांजिस्टर ही सुनते रहते हो, जहां बैठते हो साथ में गाने लगे होते हैं। तो खैर, अब वो जमाना बीत गया, अब टीवी का और नेट का और मोबाइल का जमाना आ गया। लेकिन जिसे कहते हैं ना, एफएम रेडियो ने रेडियो को भी पुनर्जीवित कर दिया, और अब हम दोबारा रेडियो सुनने लगे हैं, और खास करके एफएम चैनल और स्टेशन, क्योंकि वो बिल्कुल साफ आते हैं, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो संगीत में मेरी रुचि शुरू से ही रही है, और मैं गाने सुनने का भी शौकीन हूँ, गाने गाता भी हूँ, गा भी लेता हूँ और लिखता भी हूँ अपने गाने।
0: ये तो जग जाहिर है और हमें इसके बारे में जानकारी भी है। तो आपने गीत और गाने की बात करी है, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता है उनको हम आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनाएं, और मैं चाहूंगा कि अगर आप उसको थोड़ा सा गुनगुना भी दें तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जगजीत सिंह जी का गाना है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए।

0: होते थे, अंबाले में डिग्गियां बड़ी थी और वो सारा बरसाती पानी समा लिया करती थी अपने में। कभी हम बचपन से अंबाले में रह रहे हैं, कभी सुना ही नहीं था यहाँ बाढ़ आई है या बाजारों में पानी लग गया, कभी नहीं देखा। पहली बार 78-79 में बाढ़ आई, फिर 2004 में, 2010 में, अब फिर आ गई, तो यानी कि हर कुछ साल बाद आने लग गई है। इसका एक रीजन यही है, नदियों के अंदर हमने बस्तियां बसा दी, उनकी चौड़ाई कम कर दी, बिल्डिंगें बना दी। पंचकुला जाकर देखो, घग्गर के अंदर ही अंबाले टांगरी में देखो, डिग्गियां भर दी, वहां कॉलोनीज बन गई, प्रॉपर्टीज बन गई, पार्क बन गए। तो इस तरीके से जो है वो पानी को समाने की जो है वो जगह नहीं मिलती, तो फिर वो शहरों की सड़कों पर रुकता है, गलियों में रुकता है।
1: तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपने अपनी तरफ से उन समस्याओं को उठाया और उनका समाधान
0: भी
1: भी
0: बताया।
1: उनमें बताया। आपने शिक्षा के शोध के लिए विश्व के कई देशों में भ्रमण किया है, जैसे रशिया, स्वीडन और बहुत सारे देश। क्या अंतर आया शिक्षा प्रणाली में जब आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को देखते हैं?
0: आम तौर पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों, प्रोफेसर्स को विदेशों में जाने का मौका बड़ा कम मिलता है, और खास करके कॉलेज के प्राध्यापकों तो बड़ा ही कम, यूनिवर्सिटी वालों को तो फिर भी मिल जाता है। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा, बहुत सौभाग्यशाली रहा इस मामले में, कि मैं कॉलेज में होते हुए भी मेरे को बड़े मौके मिले विदेशों में जाने में। मैं सबसे पहले रशिया गया 1997 में एक सेमिनार अटेंड करने, वह मैं अपने खर्चे पर गया था। लेकिन उसके पश्चात मैं जब भी विदेश गया, मुझे या तो भारत सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ग्रांट दी, या फिर मुझे विदेशों की यूनिवर्सिटियों या इंस्टीट्यूट ने बुलाया। फिर मैं 1998 में हंगरी में गया 5 महीने के लिए, बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज में मुझे बकायदा ऑफिस मिला हुआ था। वो मैं गया था इंडो हंगेरियन कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू, और यूजीसी ने उसकी मेरी मेरी सिलेक्शन की थी। फिर उसके बाद 99 में मैं डेनमार्क गया, वहां एक बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट थी, कोपनहेगन पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने मुझे फेलोशिप दी थी, तो उसकी फेलोशिप पर मैं वहां पर गया। वहां के डायरेक्टर ने ये कहा कि इंडिया से कई बार हमारे पास लोग आए हैं फेलोशिप पर
1: जी,
0: लेकिन कोई भी अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करके नहीं जाता। लेकिन मैंने केवल वहां अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं किया, बल्कि उसको बाद में इंग्लैंड से पब्लिश कराया बुक के रूप में। वो इतना खुश हुए वो उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के, कहते पहले इंडियन स्कॉलर है जिसने रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं किया, बल्कि उसको बुक फॉर्म में छपाया भी इंग्लैंड से, और उसका टाइटल था बुक का न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स रेस इन साउथ एशिया,
1: यानी कि सर्वोत्तम रिपोर्ट वो तैयार होगी और उसके बाद वो प्रकाशित भी हुई।
0: फिर उसके बाद अगले 2 साल बाद उसी इंस्टीट्यूट ने, वो मेरे इतने रिसर्च काम से खुश थी, रिसर्च प्रोजेक्ट को के कम्प्लीशन से, कि उन्होंने दोबारा मुझे फेलोशिप दी। फिर 2001 में मैं दोबारा गया, वो भी प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया वहां पर। और हंगरी में भी जो मैंने गया था, वहां भी मैंने पार्लियामेंट के स्टडी, जो इलेक्शन थे वो स्टडी किए थे वहां की पार्लियामेंट की। और फिर इंडिया में आकर के मैंने कुछ हंगेरियन प्रोफेसर्स के साथ, जिनके साथ मैं वहां पर लिंक बनाकर आया था, हमने एक कोलैबोरेटिव बुक भी लिखी थी, हंगरी एंड इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम्स, दोनों के पॉलिटिकल यानी के सिस्टम्स को हमने कंपेयर किया।
1: यही मेरा प्रश्न भी था कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में इन रस्तों से कितना बदलाव आता है या आ रहा है?
0: बदलाव आता है, जैसे जब कोई एक प्रोफेसर या टीचर विदेशों में जाता है तो वहां देखता है, वहां की व्यवस्था देखता है और अपने साथ तुलना करता है अपने यहाँ की शिक्षा प्रणाली को, तो वहां की जो अच्छी बातें वो सीख कर आता है, यहाँ आकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। कई नहीं हो पाती इम्प्लीमेंट, कई हो भी जाती हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा, पंजाब की सरकार ने भी जो लेटेस्ट है, स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर को सिंगापुर भेज रहे हैं 25-25, 30-30 के बैच पे,
1: ताकि उनका वहां, सोच का वहां से सीख के आए, वो सीख के आए, वो देखें वहां की इस तरीके
0: की वैसी चीजें यहाँ लागू करें, तो इससे कुछ ना कुछ तो देखो इम्प्रूवमेंट होती है।
1: अंबाला के कई शिक्षा संस्थानों के आप मार्गदर्शक हैं, कितना आज तक आपको लगता है कि किया है और कितना करना अभी इस प्रणाली में बाकी है?
0: हमें अंबाले की कई शिक्षण संस्थाओं, जैसे आर्या गर्ल्स कॉलेज की प्रबंध समिति का सदस्य हूँ, जो अंबाले का सबसे पुराना हेरिटेज स्कूल है बनारसी दास बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसका मैं प्रबंध समिति का सेक्रेटरी हूँ। और इसके अलावा ये हमारे रोटरी का जो पवित्र धाम स्कूल है, जो गूंगे और बहरे बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, उसका भी मैं सेक्रेटरी हूँ। और उसके अलावा मारकंडा नेशनल कॉलेज शाहबाद, जहां से मैं रिटायर हुआ एज ए प्रिंसिपल, उन्होंने भी मुझे रिटायरमेंट के बाद अपने जिसे कहते हैं प्रबंध समिति का स्थायी सदस्य बनाया। आमतौर पे एक बार प्रिंसिपल रिटायर हो जाता है कॉलेज वाले उसको पूछते भी नहीं ज्यादातर केसेस में, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने मेरी पूरी कदर की और मुझे अपनी प्रबंध समिति में अभी तक रखा हुआ है। और मेरी जितने भी स्कूल कॉलेजों के साथ मैं जुड़ा हूं, मेरी कोशिश रहती है एक तो मैं वहां कुछ ना कुछ अच्छे सुझाव उनको दूं शिक्षा को सुधारने के लिए, उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए, और कुछ ना कुछ दान भी दूं। मैं हर संस्था को जिनका भी मैं साथ जुड़ा हुआ हूं, जितनी मेरी हैसियत है उससे मुताबिक मैं उनको हर साल वजीफों के लिए या विभिन्न कामों के लिए उनको हेल्प भी करता हूं।
1: ये डॉक्टर वी के मल्होत्रा जी का एक खास अंदाज है, जहां भी वो जाते हैं वो उस जगह की उन्नति के लिए जो भी सहायता आप दे सकते हैं वो आप देते रहे हैं। वेथ थिएटर ग्रुप अंबाला भी उससे लाभान्वित हुआ है। जब भी हम कोई भी थिएटर प्ले करते हैं तो आप आते हैं, तो आप हमारे कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं। ये डॉक्टर वी के मल्होत्रा जी की एक सबसे बड़ी बात है। एक और श्रोताओं को आपके पसंद का कोई गाना सुनाना चाहेंगे?
0: मुझे पर्यावरण से बड़ा प्यार है, ग्रीनरी से, पहाड़ों से, फूलों से, पौधे, किसी भी गाने में जब इनकी सुंदरता आती है तो मुझे वो गाने बड़े अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही एक गाना फरमाइश करता हूँ, ये वादियां

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। आज इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं इनसे मिलिए, और आज के हमारे मेहमान आमंत्रित है स्टूडियो में डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी, उनसे हमारी बातचीत जारी है। डॉक्टर साहब, कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है, क्या अनुभव होता है जब आपके काम को सराहा जाता है?
1: मैं कई राष्ट्रीय संस्थाओं का, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या एसोसिएशंस हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर हैदराबाद हुआ करता था, अब तो खैर वो बंद हो गया। उसके अलावा इंडियन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन स्टडीज, ये अभी भी है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कनेडियन स्टडीज, ये भी अभी है। इसके अलावा दिल्ली में दो बड़े, जिस कहते हैं ना, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट के, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ITO के पास है, और दूसरा है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैं इन सभी जो इंस्टीट्यूट्स का, जो नेशनल लेवल की है, इनका लाइफ मेंबर हूँ, और इनकी गतिविधियों में, जैसे इंडियन एसोसिएशन फॉर अमेरिकन स्टडीज़ का मैं प्रेजिडेंट भी रहा 2000-2001 के अंदर, ऑल इंडिया लेवल का। इनकी कॉन्फ्रेंसिस होती हैं हर दो एक साल बाद, जिसमें सारे इंडिया से यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर आते हैं, तो उनमें रिसर्च पेपर पढ़े जाते हैं। तो 2-3 बार मेरे रिसर्च पेपर्स को इंडियन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन स्टडीज ने उम्दा घोषित किया, और मुझे उनके ओलिक रेडिक अवार्ड और गिलमोर अवार्ड, प्रोफेसर AP राणा अवार्ड, ये ऑल इंडिया लेवल के अवार्ड है जो उन्होंने, उनसे मुझे नवाजा। उसके अलावा कई अन्य संस्थाओं से भी मुझे समय समय पर पुरस्कार और अवार्ड्स मिलते रहे हैं।
0: तो इन अवार्ड्स को देख के मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे श्रोता ये जरूर जाने कि इतनी मेहनत करके जब इस मुकाम तक हम पहुंचते हैं, तो क्या जिंदगी में जो भी हम पाते हैं, क्या उसका कोई शॉर्टकट है या निरंतर मेहनत करने का ही एक साधन है?
1: शॉर्टकट बहुत, जिसे कहते हैं लाखों में किसी एक आध व्यक्ति को मिलता है शॉर्टकट, अदरवाइज तो मेहनत से ही मिलता है सब कुछ। और कहा जाता है मेहनत बुरी बला, जो एक बार बंदा मेहनत करता है उसका फल जरूर निकलता है, उसमें से कुछ ना कुछ निकलता है। और व्यक्तियों को शॉर्टकट मेथड की बजाय जो अपना, जैसे ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए,
0: अपने तो कर्म निभाने चाहिए, तो उसमें
1: कर्म का फल मिलेगा, गीता में बिल्कुल ठीक कहा गया।
0: डॉक्टर साहब, सेवानिवृत्त होने के बाद क्या बदलाव आया जीवन में, क्या राज है आपके खुश मिजाज होने का? तो श्रोता ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद करते रहें और आप शीर्ष पे ऐसे ही बने रहें।
1: रिटायरमेंट के बाद आम तौर पर कई लोग तो बहुत मायूस हो जाते हैं कि हाय अब क्या करेंगे, अब तो जीवन में कुछ करने को रहा ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। जब हम सर्विस करते थे तो खूब भाग दौड़ करते थे, सुबह सुबह 8:30 बजे निकल जाना घर से जी, 9 बजे क्लास है, स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे, यानी कि भाग दौड़ रहती थी, जिम्मेवारी होती थी, तनाव होता था सर्विस का। लेकिन एक रिटायरमेंट के बाद उससे मुक्ति मिलती है, और सर्विस के दौरान सभी सर्विस वालों को ये शौक होता है, इंतजार रहता है कि हमें 4 छुट्टियां इकट्ठी कब मिल जाए या 2 छुट्टी कभी इकट्ठी मिल जाए। तो जब मैं रिटायर होने वाला था तो मेरा स्टाफ ही मुझसे कहता है, MN कालेशाबाद में, जी अब आपको क्या लग रहा है, कोई फील नहीं हो रहा आप रिटायर हो रहे हो, आपको दुख नहीं हो रहा? मैं कहा ना, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम सारी उम्र भर जितनी देर नौकरी करते रहे छुट्टियों की इच्छा रखते थे कि हाय हमें 4 छुट्टी इकट्ठे ही मिल जाए।
0: अब तो पूरी छुट्टी,
1: मैं पूरी लॉन्ग लीव मिल गई, मैं इसलिए बड़ी खुशी है, आराम से सुबह उठा करेंगे, कोई भाग दौड़ नहीं, आराम से नहाएंगे, और जो शौक जो मेरे थे, हॉबीज थी, जिनको मैं सर्विस में नहीं पूरी कर पाया, वो करूंगा और मैं कर भी रहा हूँ। मैंने रिटायरमेंट के बाद कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं खाली हूँ या मेरे से टाइम पास नहीं हो रहा, बल्कि मैं ज्यादा बिजी हो गया हूँ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में। लिखने पढ़ने का मुझे शौक था, वो मैं किताबें अभी भी लिखता हूँ, हर साल मेरी एक नई किताब आती है, और सारा जीवन भर तो मैंने पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की किताबें लिखी, लगभग 19-20 किताबें लिखी। अब रिटायरमेंट के बाद मैंने कविताओं पर किताबें लिखी, 5 किताबें मेरी कविताओं और गीतों पर आ चुकी है, और एक ओल्ड एज पर आई है, अंबाला भी उनमें से एक है
0: जी, मेरा अंबाला। मैं उस प्रश्न पे आने वाला हूँ, क्योंकि अब हम इस प्रोग्राम के अंतिम दौर में हैं, और अब हम उस विषय की बात करेंगे जिस विषय में आज के डेट में डॉक्टर मल्होत्रा पूरी तरह से समर्पित है और सारा समय उसी पर गुजारते हैं। सर, प्रोफेसर वीर सेन विनय मल्होत्रा ट्रस्ट कैसे, कब बना, क्या उद्देश्य है इसके, मैं आपसे जानना चाहता हूं ताकि हमारे श्रोताओं तक इसके बारे में जानकारी पहुंच पाए।
1: जब मैं सेवा में भी था, सर्विस में भी था, तो मैं सिर्फ सर्विस नहीं करता, समाज के साथ पूरा जुड़ा रहता था। रोटरी क्लब का मैं सदस्य हूं 1984 से, उसकी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता था और अन्य कई संस्थाओं का भी सदस्य हूं। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने अपने सामाजिक कार्यों पर अधिक जोर दिया, सोशल वर्क के ऊपर, रोटरी क्लब के थ्रू। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल की है, वो भी यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन, इंटरनेशनल यूथ हॉस्टलिंग। तो उसमें इंडिया में उसकी जो शाखा है उसका नाम है यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और उसके जो अम्बाला जिले का जो चैप्टर है, यूनिट है, उसका मैं इलेक्टेड चेयरमैन हूँ पिछले 4-5 साल से। उसके अलावा एक ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्ट्स एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करती है, इंटेक, आपने सुना होगा ना, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज, तो उसका भी मैं लाइव सदस्य हूँ। उसके जो हमारे यहाँ लोकल चैप्टर के जो इस समय कन्वीनर हैं वो कर्नल आरडी सिंह हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, तो उनकी गतिविधियों में भी भाग लेता हूँ, यूथ हॉस्टल्स की गतिविधियों में भी भाग लेता हूँ, रोटरी क्लब की भी। इनके अलावा रिटायरमेंट के बाद 2015 में मैंने एक ट्रस्ट भी शुरू किया अपने फादर के नाम से, प्रोफेसर वीर सेन विनय मल्होत्रा ट्रस्ट, उसको रजिस्टर कराया पहले, फिर उसके बाद उसको इनकम टैक्स में भी रजिस्टर कराया,
0: जिसमें 80G के अंतर्गत जो डोनेशंस आती हैं उन पर भी उनको इनकम टैक्स का रिबेट मिल दिया,
1: तो वो भी हमें मिला हुआ 80G वाला एग्जम्पशन भी। तो वो 2015 में बनाया और मात्र वो 10,000 के कॉर्पस फंड से शुरू किया था, और आपको जानकर खुशी होगी कि उसका इस समय कॉर्पस फंड 10 लाख से ऊपर हो चुका। और उस ट्रस्ट के जरिए उसके जो उद्देश्य हैं मेनली, एक तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि वो मेरिट होल्डर हों, फर्स्ट क्लास लेने वाले हों, पढ़ने में अच्छे हों, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, उनको मदद करते हैं,
0: ठीक,
1: डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस को हम स्कॉलरशिप देते हैं
0: जी।
1: उसके अलावा कोई पुअर पेशेंट्स हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो जितनी मदद हो सके हम उनकी वो भी करते हैं, इलाज में मदद करते हैं। उसके अलावा कई अन्य धर्मार्थ कार्य हैं, लोगों की मदद करना, तो वो करते हैं। उसके अलावा हमारे ट्रस्ट की एकेडमिक एक्टिविटीज भी हैं, जैसे सेमिनार्स करना, लिटरेरी कंक्लेव करना, और भजन संध्या करना, भजन सवेरा करना, काव्य गोष्ठियां करनी, सेमिनार करना कॉलेजेस में जाके, उसके लिए हम ग्रांट देते हैं कॉलेजेस को, और लगभग GMN कॉलेज में भी, SD कॉलेज में भी, और आर्या कॉलेज, तीनों में हमारे ट्रस्ट ने फाइनेंस किया और वहां पर सेमिनार्स हुए हैं विभिन्न करंट विषयों के ऊपर।
0: तो यानी कि बच्चों को एक मौका आप हमेशा देते हैं कि वो अलग अलग विषयों पर जानकारी हासिल करें, जैसे सेमिनार्स में आप लोग जाते हैं और आप अपने एक्सपर्टाइज उनके साथ शेयर करते हैं।
1: इसके अलावा एक बात और, हम
0: जी
1: अपने ट्रस्ट के जरिए जो कलाकारों को भी प्रोत्साहित करते हैं, जैसे व्यत थिएटर की भी मदद की, आदि मंच की भी मदद की, हमने एक और है कला धारा, एक थिएटर ग्रुप है, उसकी भी मदद की। हम सबको कोशिश करते हैं कि ये जो थिएटर का आर्ट है ये डाइंग आर्ट बन के ना रह जाए, ये जीवित रहे, इंडिया में नहीं बल्कि अम्बाले में भी ये जीवित रहे। और मुझे बड़ी खुशी है कि कई ग्रुप्स आए हैं जिनमें से आपका व्यत थिएटर भी है, जो हम ऐसे ग्रुप्स की भी मदद करते हैं
0: सर,
1: ट्रस्ट के द्वारा।
0: डॉक्टर साहब, आपके कहने के साथ मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि व्यत थिएटर ग्रुप पिछले एक दशक में अम्बाला में कार्य करता है और 16 से ज्यादा फुल लेंथ प्लेज हमने हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ में, दिल्ली तक हमारे कलाकार गए और उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, और आज तक हमने 173 कलाकारों को मंच प्रदान किया, जिनमें कुछ कलाकार इस समय राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा होती है कि अम्बाला को किसी भी तरीके से जो भी आप योगदान दे सकते हैं उस योगदान से अम्बाला को एज इट इज आगे की ओर ले जाएं। आपने पुस्तक की बात की, आपने कई सारी पुस्तकें लिखी, उसमें से मैं जानना चाहता हूं कि मेरा अम्बाला जो आपने पुस्तक एक लिखी, क्या सोच थी उस समय जब मेरा अम्बाला, मीन्स आप अम्बाला को उस तरीके से अपनाते हैं जैसे हम अपने आप को अपनाते हैं, तो हमारा भी VTG में, वेथेडर ग्रुप में और रेडियो वितस्ता पर भी यही एक उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से हम अम्बाला को आगे लेके जाएं। तो मैं जानना चाहता हूं और श्रोता भी जानना चाहेंगे, ये मेरा अम्बाला में आपने क्या बताया था।
1: ये मेरा अम्बाला पुस्तक एक काव्य संग्रह है
0: जी,
1: और बाला के ऊपर बहुत कम पुस्तकें लिखी गई हैं, दो तीन मुश्किल से पुस्तकें हैं वो ऐसे फॉर्म में हैं, लेकिन ये मैंने एक नया प्रयास किया था कि अम्बाला के इतिहास, अम्बाला की खूबियां, यहाँ की क्या इमारतें हैं, यहाँ खाने पीने की कौन सी चीज़ें मशहूर हैं और किन किन चीज़ों के लिए अम्बाला प्रसिद्ध है, ये सारी बातें मैंने एक ट्रस्ट की तरफ से काव्य गोष्ठी की थी और उसका शीर्षक दिया था मेरा अम्बाला, और सभी कवियों को ये हिदायत दी थी कि कोई और पोएम आपको नहीं बोलने दी जाएगी, आपने ओरिजिनल पोएम मौलिक लिख के लानी है मेरे अम्बाला के ऊपर,
0: जो कि अम्बाला को ही किसी न किसी रूप में
1: वर्णित करे। और उसमें लगभग मुझे उम्मीद थी कि 20-22 आएंगे, कभी आ गए 28 और सारों ने वो बड़ी रात देर तक चला वो कवि सम्मेलन, और वो बिल्कुल ओरिजिनल पोएम लिख के लाए अम्बाला के ऊपर, और अम्बाला की कोई चीज कोना नहीं उन्होंने छोड़ा अपनी पोएम में, किसी ने यहाँ के जैसे कहते हैं जैन सोडा वाटर के, गोल गप्पों की और वो पहलवान की कचौड़ी की, यहाँ तक की चर्चा की अम्बाला किन किन चीजों के लिए मशहूर है। उन्हीं की कविताओं को फिर मैंने पुस्तक फॉर्म में छापा, जो अप्रैल 2018 में श्री अनिल विज जी ने
0: उसको विमोचन किया,
1: हमारे विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने उस पुस्तक का विमोचन किया, और वो पुस्तक फिर मैंने, क्योंकि वो भी अम्बाला के लिए बहुत काम कर रहे हैं, वो पुस्तक भी मैंने श्री अनिल विज जी को ही जिसे डेडिकेट की, उनकी फोटो लगा के उसके अंदर
0: जी,
1: तो उनको बड़ी पसंद आई।
0: आपने अम्बाला लिटरेरी कॉन्क्लेव किया, अम्बाला में इन चीजों की बहुत जरूरत है क्योंकि ऐसे आयोजन यहाँ पर नहीं होते, तो क्या ऐसे आयोजन आगे भी होने वाले, क्योंकि मुझे भी उस लिटरेरी कॉन्क्लेव में एक किताब जो सुभाष जी ने लिखी थी उसका विवरण बताने में मुझे एक मौका मिला था, तो क्या इस तरीके का आयोजन आप और भी करने जा रहे हैं?
1: हमारे ट्रस्ट ने अम्बाला में ये किया था पहला लिटरेरी कॉन्क्लेव, अम्बाले में अब सेमिनार भी होने लग गए हैं विभिन्न विषयों पर, काव्य गोष्ठियां भी होने लग गई हैं, तो हमारे ट्रस्ट ने कहा कि हर वर्ष या 1.5 साल बाद हम अम्बाले के कोई जो भी लेखक है अम्बाला इसके आसपास के जिन्होंने नई पुस्तकें लिखी हैं उनका एक गोष्ठी किया करेंगे, कंक्लेव करेंगे, जिनमें उनकी पुस्तकों को हाईलाइट करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, ताकि उनको मंच मिले अपनी बात कहने का, अपनी पुस्तक प्रस्तुत करने का, और लोगों को भी, लेखकों को भी पता लगे कि दूसरे क्या लिख रहे हैं। तो पहला कंक्लेव हमने किया था 2021 में, जिसमें आप भी आए थे और सुभाष जी की पुस्तक की आपने समीक्षा की। हमने पिछले साल 2 किए, और एक हिंदी और इंग्लिश का कंक्लेव के लेखकों का, और एक प्योरली पंजाबी का, अक्टूबर और नवंबर 2022 में, और अब हम चौथा करने वाले हैं 2023 में, उसमें भी आपको आमंत्रित करेंगे
0: जरूर,
1: अम्बाला लिटरेरी क्लेव। और उसमें जो है जितने भी इस साल पिछले एक साल में किताबें नहीं छपी हैं अम्बाला के लेख, सिर्फ अम्बाला के लेखकों
0: जी,
1: उनको बुलाया जाएगा और उन्हीं को वहां पर उनकी बुक्स की चर्चा की जाएगी
0: और उनकी समीक्षा भी होगी
1: और उनको वहां पुरस्कार भी दिए जाएंगे, अवार्ड भी दिए जाएंगे।
0: हमें खुशी होगी उस कंक्लेव में आके, और हम साथ में जैसे कोई भी गतिविधि अम्बाला में होती है तो हमें बहुत खुशी होती है कि उसके ऊपर एक रेडियो रिपोर्ट पेश करने के लिए, उस संदर्भ में भी तो हम आएंगे ही। आखिर में डॉक्टर साहब, आप क्या संदेश देना चाहते हैं
1: युवाओं को? तो मेरा संदेश ये है कि जैसे अभी भी मैंने कहा, संघर्ष करना सीखे, मेहनत करना सीखे, जो भी काम, कोई खिलाड़ी है यदि खिलाड़ी में अपने काम गेम में इंटरेस्ट से हिस्सा लेगा, मेहनत करेगा, तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचेगा। इसी तरीके से पढ़ाई में जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, अच्छे पद पे भी जाएगा, अच्छी नौकरी भी उसको मिलेगी। शॉर्टकट तो किसी किसी लक्की को मिलता है, अदरवाइज मेहनत में ही जो है वो सब कुछ रखा है। पढ़ाई करो तो वो मन से करो, खेल कूद करना है तो वो मन से करो, किसी कला के प्रति प्रेम है तो वो उसमें भी आप पूरे डूब जाओ, तो आपको पूरी सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और उसके से आपको आपकी प्रगति भी होगी। और एक जो मैं संदेश युवाओं को ये भी देना चाहता हूँ, आजकल कई युवा जो है वो काम के प्रति सीरियस नहीं है, जैसे कि एक वर्ड होता है शर्कर्स, काम चोरी की आदत बिल्कुल मत डालें। अपने कोई भी जिम्मेवारी है, कोई नौकरी पे आप लगेंगे कल को, कोई बिजनेस में जाएंगे, किसी फैक्ट्री में लगेंगे, तो मन से काम करो, काम की ही कदर है, काम से ही आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस बनेगी और आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और अपनी उम्र के लोगों के लिए भी मैं संदेश देना चाहूंगा, जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होना भी जिंदगी का एक पड़ाव होता है, इसके साथ आपने जिंदगी का एक जैसे पड़ाव पूरा किया और दूसरा शुरू हो गया, जिंदगी खत्म नहीं होती है, जीवन खत्म नहीं होता रिटायरमेंट होने से, बल्कि एक नया जीवन शुरू होता है, सकारात्मक जीवन, समाज उपयोगी जीवन, अपने शौक और हॉबीज को पूरा करने का जीवन, तो वो करनी चाहिए, खाली बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना शारीरिक और मानसिक गतिविधि करते रहना चाहिए, और उसी में जो है आपको बीमारियां भी कम लगेंगी, आप चुस्त दुरुस्त भी रहेंगे, आपका समय भी पास होगा और आप सबके लिए उपयोगी भी साबित होंगे। और तीसरी अब बात कहते हैं रेडियो वितस्ता के लिए, अब इसके माध्यम से अम्बाले के कलाकारों को, अम्बाले के कवियों को, अम्बाले के खिलाड़ियों को, अम्बाले के लेखकों को और भी जो व्यक्ति हैं उनको अपनी बात कहने का, रखने का मौका मिलेगा। पहले तो अपने क्षेत्र में पहचान बनानी होती है शहर में, बाद में तो बार तो बाद में बनती है, तो उन लोगों को जो पहचान मिलेगी वो आपके रेडियो के थ्रू मिलेगी अम्बाला के अंदर। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये बहुत उपयोगी साबित होगा, आप इसमें और नए नए प्रोग्राम जोड़ रहे हैं और आपका जहां तक मैंने देखा है एम्फेसिस, जो आपका जोर है वो अम्बाला से ही संबंधित है, अम्बाला के लोगों, अम्बाला के बारे में, अम्बाला की उन्नति के लिए, इसके फायदे के लिए, तो इससे शहर को जो है वो और लोगों को बहुत फायदा होगा।
0: हम कोशिश करेंगे मिलके हम अम्बाला को एक नए शीर्ष पर लेके जाएं और विश्व पटल पर एक ऐसी जगह पर रखें जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले चंद्रमा में अपना यान उतारा, कोशिश हमारी वही है। इस प्रोग्राम का समय अब खत्म हुआ जाता है, हम डॉक्टर साहब से और आपसे भी इजाजत लेना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि एक गाना आप हमें बताएं जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ देते हैं, तो कौन सा गाना वो होना चाहिए?
1: मुझे रोमांटिक गाने भी बड़े पसंद है क्योंकि वो भी जीवन में जरूरी है।
0: इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, किसी और प्रोग्राम में आपसे रूबरू होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: स्पोरी जी आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, रेडियो वितस्ता का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, मुझे अपनी बात रखने का जो आपने मौका दिया, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। वास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती है।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हमसफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
4: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
5: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
4: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
5: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
4: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे।
5: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
4: गणपति बप्पा मोरिया।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रमन कुमार शर्मा। आपसे बातचीत होगी, बातचीत का विषय है हमारे शरीर में खून की अहमियत क्या है।
2: डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। आज हम बात करेंगे इंसान के लिए खून की अहमियत क्या है।
3: देखिए मराठा साहब, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो खून है हमारे शरीर में, उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि बिना खून के हम एक पल भी नहीं जी सकते। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी क्रियाएं हैं वो सब खून के संचार पर आधारित हैं
2: जी।
3: खून की मात्रा उचित होना ठीक है, ज़रूरी है हमारे शरीर में, और उसका पूरा संचार होना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई
2: जी,
3: तापमान का संचार, मतलब जिसको हम टेम्परेचर रेगुलेशन कहते हैं
2: जी,
3: वो खून के जरिए ही होता है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन, ये सारे जितने भी काम हैं ये सारे हमारे शरीर में खून ही करता है।
2: जी,
3: तो जैसे कहते हैं ना कि जल जीवन है, जल ही जीवन है, और देखा जाए तो हमारे शरीर में जितना खून है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पानी ही है।
2: जी,
3: तो जो खून है उसकी अहमियत जल जल के बराबर की गई है।
2: जी जी,
3: जैसे जल ज़रूरी है वैसे ही हमारे शरीर में खून ज़रूरी है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक शरीर के लिए कितनी मात्रा में खून होना चाहिए।
3: देखिए अमूमन जो इंसानी शरीर है उसमें 5-6 लीटर, जो एक हेल्दी इंसान है उसके शरीर में 5-6 लीटर खून होता है। लेकिन इसमें भी एक जो हम टेक्निकली हम बोलें तो हमारे शरीर में RBC काउंट जो है, रेड ब्लड सेल कॉर्पसल्स जो होते हैं, उनकी मात्रा उचित होना ठीक है
2: जी।
3: जिसका अंदाज़ा हम लगाते हैं कि जब हम ब्लड का एक टेस्ट करते हैं तो एक हेल्दी इंसान में, एक स्वस्थ महिला में और एक स्वस्थ पुरुष में
2: जी,
3: ये मात्राएं थोड़ी वेरी करती हैं
2: जी, जी।
3: जैसे कि एक स्वस्थ पुरुष में ये मात्रा होनी चाहिए 10 मिलीग्राम से 13 मिलीग्राम
2: जी, यानी तभी उसको आप हेल्दी
3: पर डेसिलीटर
2: हेल्दी इंसान
3: कह सकते हैं जी, जी। और यही जो मात्रा है ये थोड़ी सी कम है महिलाओं में, ये 9 मिलीग्राम से 13 मिलीग्राम पर डेसिलीटर जो है वो मात्रा होनी चाहिए
2: जी, जी।
3: इसे हम परसेंटेज में भी कहते हैं, जैसे 9% या 10%, ये लेबोरेटरीज में वेरी करता है कि वो किस मापदंड से उसको लेते हैं।
2: यानी जब आप खून की इस तरह की जांच पड़ताल होती है तो जाहिर है कि लगता है कि ये नॉर्मल हेल्दी इंसान है। अगर इस तरह इतनी मात्रा उसमें खून है,
3: हाँ इसमें है, तो अगर वो इतनी मात्रा है तो वो स्वस्थ है।
2: महिलाओं में आपने बताया कि 9 मिलीग्राम से लेकर 13 मिलीग्राम
3: हाँ,
2: तक
3: जी, हाँ, जी।
2: और पुरुषों में आपने बताया कि 10 मिलीग्राम से लेकर 14 मिलीग्राम तक।
3: अगर इनसे मात्रा अगर कम है तो हम कह सकते हैं कि कुछ पैथोलॉजिकल या कुछ शरीर में खराबी है,
2: उसके बाद जांच पड़ताल होती है।
3: जांच पड़ताल होनी जरूरी है
2: जी, जी।
3: उसकी और ज्यादा जांच पड़ताल होना जरूरी है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर खून में किसी तरह की कोई खराबी पाई जाती है, कारण क्या हो सकता है।
3: ये खून में खराबी हो जाना कारण जो है वो उचित अनुचित आहार विहार है, हमारा रहने सहने का ढंग ठीक नहीं होगा।
2: नहीं, किस तरह की खराबी पाई जाती है। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है तो कहता है कि आम भाषा में कि मेरे खून में खराबी है।
3: देखिए पहले तो उसका जो परीक्षण है हम दर्शन से करेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उससे पूछेंगे कि आपको क्या क्या महसूस होता है। अगर वो कहता है कि हाँ मेरे खून में कुछ खराबी है तो उसका उसकी तसल्ली के लिए हम और अपनी तसल्ली के लिए हम उसको उसका खून जो है वो लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। उसके मुताबिक जो रिजल्ट्स उसके एनालिसिस के आते हैं उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे।
2: किस तरह की खराबी होती है खून में इंसानी?
3: वो त्वचा रोगों से ज़्यादा ही परेशान होते हैं या ग्रस्त होते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमें खून की खराबी है तो हमें उसके लिए उपचार चाहिए। तो संबंधित जो भी उपचार होता है वो हम देने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन सबसे पहले ज़रूरी यही है कि खून की जांच की जाए। अमूमन जो लोग आते हैं हमारे जनरल प्रैक्टिस में, उनको जो आम बीमारी है उसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। तो उसमें क्या है कि बड़े बड़े छाले जैसे बन जाते हैं, कभी कभी एकदम से कपड़े खोलेंगे तो छाले बनेंगे शरीर के ऊपर, निशान बन जाएंगे। उसमें ज़्यादा खारिश होती है, रेडनेस भी ज़्यादा आ जाती है, तो थोड़ी देर बाद वो सबसाइड भी हो जाता है। कुछ लोग जो है वो लोकल उपचार जो है वो करते हैं उसका, लेकिन उसकी जांच होना बड़ा ज़रूरी है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है।
2: यानी ये सारी चीज़ें जब आप एक इंसान में पाई जाती है तो आप एकदम से जांच पड़ताल
3: जांच जांच के लिए हम उसका खून ज़रूर भेजेंगे।
2: जी डॉक्टर साहब, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। आपकी पसंद का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे अपने सुनने वालों को?
3: अच्छा मरार साहब, आप हमें सुना दीजिए, तुमसे अच्छा कौन है ये गाना है।
2: जी, एक अभी नई फिल्म है
3: जी,
2: यानी नई फिल्मों से गीत आप सुनना पसंद करते हैं?
3: जी हाँ
2: जी।

0: डॉक्टर रमन कुमार शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे खून की कमी के कारण क्या हो सकते हैं। अगर मतलब इंसानी खून में कमी पाई जाती है तो कारण क्या हो सकते हैं?
1: हम इसे ऐसे कहेंगे कि हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उसका कारण क्या होगा, कारण क्या क्या हो सकते हैं।
0: जी,
1: तो सबसे पहले कारण तो आम जो हम देखते हैं वो है अनुचित आहार और विहार। आहार से मतलब है कि हम खाना प्रॉपरली नहीं खाते हैं, और दूसरा विहार है कि हम ठीक तरीके से अपनी क्रियाएं या जो कार्य हैं वो ठीक तरीके से नहीं करते।
0: जी,
1: विहार से मेरा मतलब है कि हमारा रहन सहन जो है वो अच्छा नहीं होता।
0: नहीं।
1: अब आहार में अगर हम खाना जो है ठीक वक्त पे नहीं खाएंगे, उचित मात्रा में नहीं खाएंगे और हर प्रकार का खाना नहीं खाएंगे, हम उसको अनुचित आहार कहेंगे।
0: जी,
1: अनुचित विहार को मैं ये कहूँगा कि जब इंसान को जागना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब कौन सा काम करना चाहिए, इसको हम अनुचित विहार कहेंगे। तो अब अनुचित आहार में मैं एक बात कहूँगा कि जो ये जो अनीमिया है इसमें विरुद्ध आहार, मतलब जो है कॉन्ट्राडिक्टरी जो डाइट्स हैं, अगर हम वो ले लेते हैं तो उसके कारण भी ये होता है। मसलन हमने दूध खाने के बाद खटाई खा ली, तो या और कोई चीज़ ऐसी खा ली जो हजम नहीं होगी बाद में, तो उसके कारण जो है खाना ठीक तरीके से पचेगा नहीं। जब पचेगा नहीं तो वो अब्जॉर्ब कहाँ से होगा, तो जो खाने में उसके कंटेंट्स हैं, जो उसकी गुणवत्ता है, वो हमारे शरीर में नहीं जाएगी। तो अर्थ उसका जो है अर्थ वो ये निकलेगा कि हमें अनीमिया हो जाएगा।
0: अच्छा डॉक्टर, महिलाओं में अक्सर खून की कमी पाई
1: जी
0: जाती
1: हाँ,
0: है।
1: ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि महिलाओं में खून की कमी ज़्यादा इसलिए पाई जाती है क्योंकि जब वो 11-12 साल की उम्र जब अटेन कर लेती हैं और उससे ज़्यादा 50 तक की उम्र तक, तो उनमें जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं उसकी क्रिया हर महीने देखने को मिलती है। तो उस दौरान जो है जो यूट्रस जो है वो अपने आप को रिपेयर करता है, तो उसमें खून की बहुत सारी मात्रा जो है वो उसका नुकसान हो जाता है।
0: ये एक नेचुरल प्रोसेस
1: हाँ, ये नेचुरल
0: महिलाओं
1: प्रोसेस
0: के
1: है।
0: लिए।
1: जी हाँ
0: जी जी
1: जी हाँ, तो उसके दौरान मतलब ये एक हर महीने एक तो होगा, और कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि वो ज़्यादा मात्रा में खून जो है खून का स्राव होता है,
0: जी जी
1: तो उसके कारण अनीमिया की शिकायत हो जाती है।
0: जी
1: अगर नॉर्मल जो है वो नॉर्मल स्राव होगा तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा बहुत कष्ट होता है लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसा है कि वो एक डिजीज़ का रूप ले लेती हैं, उसके कारण उनको अनीमिया हो जाता है।
0: जी जी
1: तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह, अगर किसी महिला में ऐसा देखने को मिलता है तो उसको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए
0: जी जी
1: उनको।
0: डॉक्टर साहब, प्रसव के दौरान भी इस तरह
1: हाँ
0: की शिकायत पाई जाती है महिलाओं में
1: हाँ
0: खून
1: जी
0: की कमी।
1: जी जी जी ये ऐसा है कि जब प्रसव होता है तो एक इमरजेंसी के तौर पे लिया जाता है कि जब प्रसव होता है
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: बच्चे की जान भी खतरे में होती है, माँ की जान भी खतरे में होती है। तो कई महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद ब्लीडिंग होती है। प्रसव के दौरान तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती ही होती है, लेकिन उसके बाद भी कई बार ज़्यादा हो जाती है, उसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो उसको उसका उसका एकदम से इलाज ये है कि आपके पास खून का प्रबंध होना चाहिए, उसी ब्लड ग्रुप का प्रबंध होना चाहिए, ताकि जैसे ही जो वहाँ पे डॉक्टर हैं उनको मालूम चले कि
0: जी
1: इनको खून की कमी हो गई है तो एकदम से उनको ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं।
0: जी
1: तो उनको निकटतम प्राथमिक से स्वास्थ्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितनी जल्दी हो सके उनको मेडिकल अटेंडेंस मिलना बड़ा ज़रूरी है।
0: अच्छा, प्रेगनेंस के दौरान भी क्या महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है?
1: जी हाँ, उसमें ऐसा है कि खून की कमी, खून खून की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो एक गर्भवती महिला है वो अकेली नहीं जी रही, उसके साथ उसका बच्चा भी उसके पेट में जी रहा है। तो अब उसकी खून की आपूर्ति जो है वो भी उसी की जो जो माँ उसका माँ उसकी आहार खाएगी उसी में से वो निकालेगा। तो अब उसके ऊपर दो लाइफ्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं।
0: यानी ज्यादा स्ट्रेस आप देते
1: हाँ
0: हैं कि आहार पे,
1: जी
0: खाने
1: हाँ
0: पीने की
1: जी हाँ,
0: चीजें।
1: ये आपने बड़ा अच्छा सवाल है किया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने आहार और विहार का खूब ख्याल रखना चाहिए ताकि उनका जो होने वाला बच्चा है वो अच्छे तरीके से हिष्ट पुष्ट हो, उसका जन्म जो है वो अच्छे तरीके से हो
0: और
1: उसका।
0: प्रेगनेंसी के दौरान खून टेस्ट वगैरह जरूरी
1: जी
0: करवाना चाहिए
1: हाँ
0: ताकि
1: जी
0: पता
1: हाँ
0: चले
1: ये
0: कि आपके पास
1: जी
0: कितना
1: हाँ
0: मिलीग्राम।
1: ये जब जब एक महिला जो है वो गर्भवती हो जाती है तो उसका एक कार्ड बनता है, वो वक्त वक्त पे जाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच करवा सकते हैं। उनको वहाँ से फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी मिलती हैं और टेटनस के इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक औरत को मालूम चल जाए कि हाँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या गर्भवती हूँ तो उसको ये चाहिए, उसके घर वालों को चाहिए कि उसको मेडिकल अटेंडेंस दी जाए।
0: और ज़्यादा स्ट्रेस देना है कि
1: खाने
0: खाने
1: पे,
0: पीने की।
1: आहार पे,
0: जी
1: उसको
0: जी
1: बैलेंस डाइट जूस देना जो
0: और
1: है
0: ये भी
1: वो बहुत
0: देखना है
1: ज़रूरी
0: कि
1: है।
0: ब्लड की कहीं पे कोई कमी तो नहीं पाई जा
1: हाँ
0: रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्त वक्त पे जो खून का टेस्ट है वो होते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, रक्तदान करना कितना जरूरी है?
1: देखिए रक्तदान करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रोगग्रस्त हैं, उनको खून की बहुत ज़रूरत रहती है। कुछ रोगी ऐसे हैं कि अगर उनको रक्तदान ना किया जाए तो वो शायद अगले दिन मर जाएंगे।
0: जी।
1: अब रक्तदान करना आम आदमी के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर हम वक्त पर वक्त वक्फे के बाद अगर हम रक्तदान ना करें तो हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें ब्लड की कमी आ जाएगी। रक्तदान उससे करवाते हैं तो पहले उसका बकायदा पूरा टेस्ट होता
0: पूरी
1: है,
0: जांच पड़ताल होती
1: क्या
0: है,
1: ये रक्तदान करने के
0: काबिल है।
1: काबिल इंसान है कि
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: है, क्या ये काबिल, मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, बस ये है कि वो स्वस्थ है कि
0: जी
1: नहीं है
0: जी जी
1: और उसको दिमागी तौर पे भी पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ मैं रक्तदान कर रहा हूँ।
0: यानी किसी की जिंदगी को बचाना
1: हाँ
0: सबसे बड़ी बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये डॉक्टर साहब, कब कब रक्तदान करना चाहिए? जब हमने रक्तदान एक बार किया उसके बाद कब हम कर सकते हैं?
1: देखिए रक्तदान जब एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो रक्तदान करता है तो उसको मिनिमम 3 महीने का गैप देना चाहिए, उससे पहले उसको कभी भी रक्तदान नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके शरीर में ही कमी आने की, रक्त का अभाव होने का अंदेशा हो जाता है। कई लोग तो मेकअप कर लेते हैं,
0: जी
1: अपना खाना पीना पूरा रखेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन वैसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि आप 3 महीने से पहले रक्तदान करें,
0: जी
1: उससे आपके शरीर को ही नुकसान हो सकता है।
0: क्या उम्र होनी चाहिए, किस उम्र में आप रक्तदान कर सकती हैं?
1: देखिए 18 साल से लेके 45 साल की उम्र तक जो है रक्तदान इंसान कर सकता है
0: जी
1: और ये डिपेंड कर, इससे कम तो हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे भी तो शायद नहीं करेंगे।
0: जी जी
1: तो एक मेरा मेरा मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि जो भी रक्त देने के लायक इंसान है, जो स्वस्थ इंसान
0: जी
1: है,
0: जी यानी
1: जो हाँ
0: फिजिकली,
1: फिजिकली जो फिट
0: मेंटली,
1: है,
0: टेक्निकली वो फिट
1: हाँ
0: है।
1: फिट है, उसको रक्तदान करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है आज दुनिया में।
0: डॉक्टर रमन जी, हम यहाँ पे विराम देंगे अपनी बातचीत को और आपकी पसंद का दूसरा गाना अपने सुनने वालों तक
1: देखिए
0: पहुंचाना चाहेंगे।
1: मराठा साहब, अब आप मेरे को गाना सुना दीजिए, मुझसे शादी करोगी,
0: इस फिल्म से कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: ये टाइटल सॉन्ग।
0: इस फिल्म का टाइटल
1: जी
0: सॉन्ग।
1: हाँ

0: डॉक्टर रमन कुमार शर्मा हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आए हैं। खून की मात्रा शरीर में नॉर्मल रहे,
1: ठीक है,
0: क्या करना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जितना इंसान को पानी दिन में पीना चाहिए वो ज़रूर पीना चाहिए। उसकी मात्रा मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 3 लीटर पानी जो है वो एक, जब एक इंसान अपना पूरी क्रियाएं पूरे दिन में कर रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, तो कम से कम उसको एक एडल्ट जो व्यक्ति है उसको 3.5 से 4.5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, और समय से खाना खाना चाहिए
0: जी,
1: समय से सुबह उठना चाहिए। उसकी जितनी भी वृत्तियां हैं, मतलब जो वो काम करता है उसको प्रॉपरली करना चाहिए, ताकि वो

0: उनमें आयरन ज़्यादा रहता है,
1: जी
0: और नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें सिट्रिक एसिड जो है वो हमारी डाइजेशन
1: बहुत
0: में
1: जरूरी है
0: सहायता करता है, और
1: जी
0: जिसके कारण अब्जॉर्प्शन जो है वो आयरन का अच्छा हो जाता है। हम अगर आयरन की टैबलेट्स लेते जाएंगे, मतलब जो आयरन सप्लीमेंटेशन टैबलेट्स होती हैं वो लेते जाएंगे, और फोलिक एसिड की टैबलेट्स नहीं लेंगे, तो आयरन का टैबलेट्स खाने का कोई मतलब नहीं है,
1: जी
0: वो वेस्ट ही निकल जाता है। तो आहार में मैं ये कहूँगा कि उचित मात्रा में खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, और वक्त पर वक्त खाएं।
1: आपने आपने पानी को ज्यादा अहमियत दी है,
0: जी
1: पीने
0: हाँ
1: का पानी जो
0: जी
1: हम
0: हाँ जी
1: इस्तेमाल
0: हाँ
1: करते
0: वो इसलिए
1: हैं।
0: है क्योंकि जो पानी है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सॉल्वेंट की बड़ी ज़रूरत रहती है। अब हमारे जो आंतरे आंतरे हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें से जो आयरन, जो महत्व है जिस चीज़ का हमारे आहार में, वो उसको अब्जॉर्ब करने के लिए पानी बड़ी ज़रूरी है।
1: आपने कहा कि कितना पानी पीना चाहिए दिन में?
0: 3.5 से 4.5 लीटर,
1: जी
0: 4 से 5 लीटर हो जाए नो प्रॉब्लम। अगर आप ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो वो भी चलेगा,
1: जी जी
0: लेकिन नॉर्मल अगर आप व्यायाम करते हैं तो इतना पानी ज़रूर पीना चाहिए।
1: आमतौर पर महिलाएं ये मांस वगैरह नहीं खाती हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या खाना चाहिए?
0: देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियां और पनीर, पनीर की अहम मात्रा है, मतलब बहुत ही महत्व है पनीर का हमारे डाइट में, क्योंकि दूध जो है दूध का बाई प्रोडक्ट है, तो इस दुनिया में कहा गया है कि दूध जो है वो कंप्लीट डाइट है। तो इसलिए दूध दूध का महत्व भी ज़्यादा है, दूध भी लेना चाहिए। और इसके अलावा हॉर्स ग्राम है, जिसके हम चने कहते हैं, काले चने कहते हैं,
1: जी
0: वो
1: जी
0: खाना चाहिए,
1: जी जी
0: उसमें जो आयरन का मात्रा है वो काफी रहता है।
1: जी जी और समय समय पर ये भी चेक करवाना है
0: हाँ,
1: कि
0: ताकि
1: खून की
0: पता चलता
1: मात्रा।
0: रहे। जी हाँ, ये गर्भिणियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने खून की जांच जो है वो करवाते रहें, ताकि अगर कोई कमी हो तो वक्त रहते पता चल सके और उसका उपचार हो सके, ताकि उनके आने वाले जो जो उनका आने वाला बच्चा है उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना हो उनके उनकी अनीमिया की कंडीशन का।
1: और किसी तरह कोई मेडिसिन होती है जो ली जाती है अगर खून
0: जी
1: की कमी
0: हाँ
1: है?
0: जी हाँ, जब गर्भिणियाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाती हैं या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाती हैं, तो अगर उनके खून में कोई कमी पाई जाती है या उनके उनके शरीर में खून की मात्रा कम है, तो उनको आयरन सप्लीमेंटेशन दी जाती है, उसके साथ उनको फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी दी जाती हैं, और ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त मिलती हैं। ये भारत सरकार का एक अभियान है, अभी तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी आ गया है, उसके तहत
1: जी,
0: काफ़ी उनका टारगेट ही यही है कि जो जच्चा बच्चा है वो स्वस्थ रहे।
1: डॉक्टर रमन कुमार शर्मा, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अपनी पसंद का कोई गीत बताइए जो हम अपने सुनने वालों तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाएंगे।
0: देखिए साहब, आप हमें फना फिल्म का कोई भी गाना सुना दीजिए, वो
1: जी
0: चांद सिफारिश जो करता हमारी।
1: जी, शान की आवाज में।
0: जी
1: जी,
0: हाँ,
1: इस गाने के लिए शान को अभी एक पुरस्कार भी मिला है,
0: अच्छा,
1: फिल्म फेयर
0: जी
1: पुरस्कार
0: जी जी
1: भी
0: जी
1: मिला
0: जी
1: है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन कुमार शर्मा, आप हमारे साथ बने रहे,
0: ओके धन्य साहब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर रमन कुमार शर्मा से की गई बातचीत आप सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय था, हमारे शरीर में खून की अहमियत क्या है। आपके साथ बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दुनिया बस

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जयसिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: राम, अगर हम तुम्हें 5 लाख रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे?
4: नहीं, कभी नहीं।
3: अच्छा राम, अगर हम तुम्हें 1 लाख तोला सोना दें तो वापस जाओगे?
4: अयू नोको नोको नोको, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे।
3: राम, यहाँ। कुछ पियोगे?
4: क्या पिलाएंगे आप मेरे को, चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे?
3: नहीं, सोमरस।
4: सोमरस क्या होता महाराज? अरे अरे अरे, दारू की बात कर रही क्या? किधर की दारू पिलाएंगे, गोलकुंडे की या स्कॉच की?
3: नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मत हो जाओगे।
4: मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली, जल्दी पिलाओ महाराज।

0: Domino's kakkaları da Coca Cola gibi etti.
1: Maharaj.
2: Bolo.
1: Ek baat yaad aa gayi Maharaj mere.
2: Poochho.
1: Wo hamare niche ye peene ke liye kahin permit hai kahin permit nahi hai. यहाँ का क्या हिसाब किताब है?
2: मगर यहाँ कोई रोकथाम नहीं, ये देवलोक है, यहाँ जी भर के सोमरस पियो, जी भर के सोमरस पियो।
1: एक दूसरी बात भी याद आ गई महाराज।
2: बोलो।
1: इधर आओ। मैं शराब पीने से पहले ही आपको बोल देता हूँ, बाद में आप ये नहीं बोलना कि मैं नशे में बोल रहा
2: हूँ। अच्छा,
1: एक पोटी थी।
2: पोटी?
1: हाँ, मेरा मतलब एक छोकरी थी।
2: अच्छा,
1: उसका नाम था चुनिया।
2: सुनिया?
1: हो, आजकल के जमाने की वो छोकरी थी, उन्हें प्यार मेरे से करती थी, मेरे कंधे पे से किसी दूसरे को देखती थी और उसके दिमाग में कोई तीसरा रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी मर गई। अगर आप मेरे को चुनिया से मिला दिए तो मैं बगैर किसी तकलीफ के किसकी भी बॉडी में बोलो घुस जाऊंगा।
2: शाबाश, तो फिर घुस जाओ उन बादलों के झुंड में जहां चुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ
3: चुनिया। अरे किधर है रे तू?

আজি ঘাস লে ডাল কো ফুক ডালো না নিচে সে মাছ কি কান দিলো

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
2: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साय 7 बजे।
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साय 8 बजे।
2: गणपति बप्पा मोरिया।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आइए आज बात करते हैं प्यार की। इस संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी प्यार जरूर होता है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे आपको सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही पहले प्यार में भी आप ऐसे ही पड़ जाते हैं, बस सोचे समझे बगैर। और उस पहले पहले प्यार के कहने ही क्या, जब आपके लिए हर बात हर चीज का मतलब बदल जाता है, सब कुछ बहुत रुबेला सा नजर आता है। आप हमेशा इन्हीं ख्यालों में रहना चाहते हैं। पहला प्यार बहुत ही नादान, सच्चा और खास होता है, जो बिना कुछ सोचे समझे बस हो जाता है। ये लड़के और लड़की दोनों के दिलों को ऐसा अनुभव से भर देता है जो बयां नहीं किया जा सकता। पहले प्यार का एहसास आप कभी भी नहीं भूल सकते, चाहे उसके बाद आपको फिर किसी और से प्यार हो भी जाए। पर पहले प्यार से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास यादें होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं, जिन्हें आप भूलना भी चाहे तो कभी भुला नहीं सकते।

कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो प्यार जीने की वजह बन जाता है। धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिलों की बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो तुम।

कभी कभी ये समझने में बड़ी कठिनाई होती है कि ये प्यार ही है या कुछ और। पहला पहला प्यार हो तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। किसी का अच्छा लगना और फिर एक ही मुलाकात में पूरी जिंदगी बन जाना, ये कैसा एहसास है जिसने पूरे जीवन को बदल डाला है। जिंदगी बदल गई है, वो सब कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। कहीं ये प्यार तो नहीं है, बड़ी उलझन है। लेकिन जाने तो कैसे जाने कि आपको प्यार हो गया है। अगर ऐसा ही कुछ एहसास आपके मन में जाग रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको प्यार प्यार और सिर्फ प्यार हो गया है। हर पल मन में कुछ बेचैनी सी महसूस होती है, सब कुछ होने के बाद भी कहीं कुछ कमी सी लगती है। उसका जिक्र छेड़ते ही प्यार की खुशबू आती है, उसका नाम सुनते ही चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है, दिल धड़कने लगता है। पूरी रात इधर उधर करवट बदल बदल कर ही बीत जाती है, नींद आती ही नहीं है। आए भी तो कैसे, आंखें बंद करते ही वो सामने आ जाते हैं और फिर पूरी रात आंखों आंखों में ही कट जाती है। वो साथ हैं तो जिंदगी हसीन और मौसम खुशनुमा बन जाता है। इसी तरह जिंदगी की ख्वाहिश करने लगती है, आपके चेहरे पर अचानक ही गजब का निखार आ जाता है। दोस्त कहने लगते हैं कुछ तो चक्कर है, लगता है ये प्यार की चमक है, और आप शर्मा कर मुंह छुपा लेते हैं। जी हां, ये पहला प्यार है।

पहले प्यार का होना जितना आसान नहीं होता, ठीक उसी तरह उससे भूलना भी आसान नहीं होता है। वैसे तो प्यार हमेशा खास होता है, लेकिन पहले प्यार के दौरान हुई छोटी सी छोटी घटना भी आपको याद रह जाती है और उससे आप भूल नहीं पाते हैं। दरअसल पहला प्यार आपको उन घटनाओं से परिचय करवाता है जिससे आपने पहले कभी किया ही नहीं है। पहले प्यार के दौरान हुई चीजें अच्छी हो या बुरी, आश्चर्यजनक हो या स्वाभाविक, लेकिन आपको उस दौरान की हर बात याद रहती है। ये सारी चीजें आपके जीवन का एक हिस्सा होता है। जब भी आप अपने पहले प्यार के बारे में सोचते हैं तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा अजीब पर बहुत अच्छी लगती हैं। भले ही आपका पहला प्यार 50 साल पहले ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन आपको उस दौरान की एक एक बात याद रह जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि इंसान की याददाश्त तेज है, इसलिए उससे हर बात याद रह जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं।

अनोखा होता है पहला प्यार। आपने पहले प्यार को अपने जिस व्यक्ति के साथ अनुभव किया था, हो सकता है उन्होंने आपको नई चुनौतियों को लेने और नई चीजों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया हो, जिससे वो आपके यादों में बस गए हो। कुछ मामलों में पहला प्यार भी आपके विभिन्न भौतिक प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है, जो आपके अंदर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं को लाने का कारण हो सकता है। आप जब भी पहली बार प्यार में पड़ते हैं तो आप उस प्यार के सामने अपने आप को कमजोर समझते हैं। अचानक आप किसी और के बारे में इस तरह से परवाह करने लगते हैं कि आप खुद को ही भूल जाते हैं। जब आप प्यार के रोमांटिक अंदाज को अनुभव करते हैं तो आपके अंदर संभावना और उत्साह की नई दुनिया खुल जाती है। प्यार के दौरान महसूस की गई चीजें आपके द्वारा पहले महसूस की गई किसी भी चीज के विपरीत होती है, इसलिए इसका अनोखापन आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है।

जवानी की याद दिलाता है पहला प्यार। आप जब भी पहले प्यार में होते हैं तो उस समय दुनिया की हर चीज आपको अच्छे लगने लगती है, क्योंकि ये समय आपके जीवन का वो समय होता है जब आप पहली बार जवानी की दहलीज पर आकर खड़े होते हैं। पहला प्यार आपके युवा अवस्था की यादों को फिर से वापस ले आता है। अपनी जवानी का प्रतिनिधित्व करने के साथ पहला प्यार आपको उस समय की याद दिलाता है जब आपको संभावनाएं अंततः लगती थी। उस समय आपको जीवन से जुड़ा हर कुछ आपको नया और रोमांचक लगता है। पहला प्यार को याद करते हुए आप इतिहास की अच्छी यादों में चले जाते हैं और अपने आज को ढूंढने लगते हैं।

बार ही होता है पहला प्यार। जीवन में किसी घटना का होना केवल एक ही बार होता है, जिस वजह से उस घटना की याद विशेष रूप से स्थान बना लेती है। ठीक उसी तरह आपका पहला प्यार भी है। आपका पहला प्यार हमेशा आपके साथ रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये आपका पहला प्यार है। पहला प्यार हमेशा आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पहला ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता

कि बाद में आपको किससे और कितना गहरा प्यार हो रहा है। हम जब भी अपने आज को देखते हैं तो हमें अपने सुनहरे कल की याद जरूर आती है। आप जीवन में हुई उन गलतियों को भी याद करते हैं और उन गलतियों को सुधारने में मदद करने वाले लोग की भी याद आती है। इन यादों में आपका पहला प्रेम भी शामिल होता है। दरअसल पहला प्रेमी आपकी प्रेरणा होता है, जिसे आप जीवन में बहुत बार याद करते हैं, और अगर आपके जीवन में वो साथ है तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता।

प्यार का कोई और विकल्प ही नहीं होता। अमूमन हर चीजों का कुछ न कुछ विकल्प मौजूद होता है, लेकिन पहले प्यार का कोई विकल्प नहीं होता। युवा अवस्था के दौरान जीवन हमें जहां भी ले जाता है हम वहां चले जाते हैं। इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। अक्सर पहला प्यार भी युवा प्यार होता है। छोटी उम्र में हम परिवार की गतिविधियों में बंधे होते हैं। परिवार के द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ही हम अपना जीवन जीते हैं। लेकिन प्यार में हम अपने से निर्णय लेते हैं। पहले प्यार के दौरान हमें किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि ये ईमानदारी से विकसित होता है। लेकिन पहले प्यार के बाद हम किसी भी बात के रिश्ते में स्वार्थी हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम अपने अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें अपने पहले प्यार की याद जरूर आती है। इसके साथ ही करता हूं समापन आज के इस कार्यक्रम का। हमें आपसे उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दे देंगे। आप फीडबैक दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 9416013010। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित ये लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती हैं।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हमसफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: यह है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम गजल गायक जगजीत सिंह के ऊपर, और पेश करने जा रहे हैं रमेश मरहटा।
1: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह नहीं रहे।
2: चिट्ठी न कोई संदेश,
1: ऐसे हिजर के मौसम कब कब आते हैं, तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं। जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। उनके वालिद मोहतरम सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के एक विभाग PWD में सरकारी कर्मचारी थे। जगजीत का परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां थी बचन कौर। जगजीत के बचपन का नाम जीत था। बाद में ज्योतिषों के कहने पर उनका नाम जगजीत पड़ गया। शुरुआती तालीम गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और

बाद में पढ़ने के लिए आप जलंधर आ गई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सन 1965 में आप मुंबई आ गई और पेइंग गेस्ट के तौर पर मुंबई शहर में ही रहने लगे और यहाँ विविध भारती में जिंगल और विज्ञापन गाकर रोजी रोटी कमाने का जरिया पैदा किया। सन 1976 में पहला हिट एल्बम पेश किया और इन 1967 में एक रिहर्सल के दौरान आपकी मुलाकात चित्रा से हुई और दो साल के बाद यानी 1969 में आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों साथ मिलकर गाने

छोटी सी रात वो लंबी उनकी गजल गायकी चिनाब के पानी से उठती हवा की हल्की महक का एहसास कराती है। बेशक जहलम के उस पार गजल गायकी की एक बेशकीमती दुनिया बसती रही है, पर वहां भी इस बात का इल्म रहा है कि दूसरी छोर पर गजल को बहुत करीने से संजीदा जज्बात से सजाया

गजल ही नहीं, दोहे, कुछ लोकगीत और भजनों में भी जगजीत ने अनोखा समर्पण दिखाया। बेगम अख्तर ने गाया और बखूबी गाया। मेहदी हसन को तो लोगों ने ऊंचे तख्त पर ही बिठा दिया। गुलाम अली हर महफिल की शान हो गए, पर जगजीत को यह दर्जा मिला कि उनकी वजह से गजल लोगों में आम हो गई।

पंजाब की धरती में शायद नदियां भी सुर से बहती हैं। जगजीत ने वहां की खुशबू को पहचाना, शौक मिजाज को समझा, वहां के रंगों को जाना और जगजीत बचपन से ही गाने लगे। आपकी गजल हर दिल को छूती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। शास्त्रीय संगीत की तालीम उन्होंने उस्ताद जमाल खान से ली। जगजीत के पिता एक साज बजाया करते थे और उस साज को दिलरुबा कहते हैं। घर में भले ही संगीत का माहौल नहीं था, पर उनके पिता को संगीत का शौक था। जगजीत के पिता ने ही जगजीत को संगीत की तालीम दिलानी शुरू की। बाद में उनका रुझान इस तरफ हो गया और आप सीखने लगे। जगजीत ने राजस्थान के श्री गंगानगर के पंडित छगनलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया और लगभग 2 साल तक संगीत की तालीम हासिल की।

सन 1990 में एक सड़क हादसे में विवेक उनका बेटा जो 21 साल का था दुनिया से चल बसा। उनकी गोद ली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर दुनिया, जगजीत और चित्रा को अलविदा कहा। जगजीत अक्सर कहा करते थे, संगीत के लिए समर्पण और रियाज की जरूरत होती है। जब तक मैं जिंदा हूं गजल भी जीवित है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह पर एक कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता रमेश मरहटा। यह है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं, और आशा करते हैं कि आपको हमारे आज के प्रसारण भी पसंद आए होंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, जो हम हर दिन आपको नोट कराते हैं। आज भी कुछ खास विषय पर बात करने के बाद नोट कराएंगे और बताएंगे आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण भी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 3 सेकेंड। गुजरते वक्त के साथ आज का ये प्रसारण भी अपनी मंजिल तक आ पहुंचा है। उम्मीद है इन लम्हों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपकी शाम को और रौनक बना दिया होगा। दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय है शिक्षा ही समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। शिक्षा केवल किताबें पढ़ने या डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि यह इंसान के सोचने समझने के नजरिए को बदलने कि एक सतत प्रक्रिया है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो अंधविश्वास, अज्ञानता और पिछड़ापन को दूर कर व्यक्ति को आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बनाती है। आज के दौर में शिक्षा का दायरा सिर्फ स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये जीवन भर चलने वाली एक यात्रा बन गई है। बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कारों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हर माता पिता और समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज का शिक्षित बच्चा ही कल का जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनेगा। इसके साथ ही बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना भी आज समय की मांग है, क्योंकि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हर बच्चे तक शिक्षा की रोशनी पहुंचे, ताकि हमारा समाज और हमारा देश ज्ञान, प्रगति और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहे। तो आप सभी जानते हैं कि जो युवा है वही हमारे देश का भविष्य है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, बेटा हो या बेटी, बराबर नजर रख के उनको हमें शिक्षित करना चाहिए। और रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज भी समय समय पर इन बातों को दोहराता है, ताकि आपके मन में ये बात जरूर रहे जब आप अपने बच्चों की परवरिश करें। हमने जो सीखा है, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने विचारों से लेके और जो हमारी जिम्मेदारी है एक रेडियो संचालक के भांति, वो हम कोशिश करते हैं आप तक उन बातों को पहुंचाएं। तो ये था आज का विषय, और अंत में आपके लिए हर दिन 4 पंक्तियां लाता हूं जो वितस्ता और हमारे आज के विचार के साथ जुड़ी होती है। आइए ये 4 पंक्तियां आप सभी के नाम, और उसके बाद बताऊंगा कल के कार्यक्रमों का विवरण। आज की पंक्तियां यूं हैं: वितस्ता की तरह निर्मल रहे हर एक विचार, वितस्ता की तरह निर्मल रहे हर एक विचार, बहते पानी सा हो जीवन में भी प्रवाह हजार। वितस्ता की तरह निर्मल रहे हर एक विचार, बहते पानी सा हो जीवन में भी प्रवाह हजार, न रुकना है न थकना है बस आगे बढ़ते जाना है, न रुकना है न थकना है बस आगे बढ़ते जाना है, यही तो है सफल जीवन का सबसे बड़ा सार, यही तो है सफल जीवन का सबसे बड़ा सार। हाँ दोस्तों, ये पंक्तियां आप सभी के नाम, और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 22 सितंबर 2026 मंगलवार को जो कार्यक्रम लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करते हैं, लाते हैं आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत और 7:05 पर घर परिवार होगा कार्यक्रम। हमारे साथ होंगी नेहा धाकड़, पेश करेंगे दीपक कश्यप, और 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय एपिसोड 2 दान आप सुनेंगे
नरेश शर्मा जी की आवाज में। 9:30 रेट्रो हिट्स एपिसोड 14 होगा, शीर्षक होगा बाबुल, पेश करेंगे आरजे किडनी, और 10:15 पर तैरते बादलों में एक शाम, एक कार्यक्रम जो हमारे गुरुजी रमेश मराठा पर आधारित है और उनको समर्पित है। पेश करेंगे नरेश शर्मा, संगीत की सभा जारी रहेगी, 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, और 7:00 होगा कार्यक्रम वीरतास्ता गीतमाला एपिसोड 10। ये आधारित है डॉक्टर माधवी गणवीर की कविताओं और गजलों पर आधारित। पेश करेंगे भारत सोपोरी और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा, और कल की कड़ी है ठगा ठगा है मौसम। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आशा करता हूं ये कार्यक्रम आपको पसंद आएंगे। अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाई, इसको तैयार किया था हमारी टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अन्नू ने। तो श्रोताओं, यही विराम देते हैं आज के इस सफर को। उम्मीद है कि यह प्रसारण आपको पसंद आया होगा और आपके दिन को थोड़ा और रोशन कर गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा। FM 90.0 MHz वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और सुनते रहिए हर दिन सुबह 6:00 से रात के 9:00 तक। कल सुबह तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।